103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। हमारी सभा में आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।

0: दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ₹103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए सुने चिंतन।

इस संसार में अगर आप किसी को कुछ बांटने की चाह रखते हो तो आप दूसरों को दुआएं दीजिए, क्योंकि दुआओं से बड़ा कोई अन्य उपहार नहीं हो सकता। किसी से मिली दुआएं हमारे जीवन में सकारात्मकता के साथ साथ हमारे जीवन को सरल बनाती है। जब हम किसी का सच्चे दिल से अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए बस दिल से दुआएं ही दी जाती है। आपकी इन दुआओं से बड़ा और कोई उपहार किसी के लिए नहीं हो सकता। चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

इस संसार में सबसे सरल है भोलेनाथ शिव शंकर की आराधना करना, क्योंकि जो कोई भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है वो उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो आइए हम सब मिलकर भी भोलेनाथ शिव शंकर की आराधना करें।

मनुष्य इस संसार में आकर सांसारिक कार्यों में लिप्त होकर कई तरह के पाप करने में व्यस्त हो जाता है और भूल जाता है भक्ति के मार्ग का अनुसरण करना। केवल प्रभु स्मरण से ही हमारे सभी कष्टों का नाश हो सकता है।

राम नाम की महिमा अपार है। इस राम नाम के सहारे अनेकों प्राणी संसार रूपी भवसागर से पार उतर गए। तो आइए हम सब भी गुणगान करें राम नाम की महिमा का।

श्रोता, इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे रामचरितमानस से एक और भक्तिमय प्रस्तुति मानस गान।

अयोध्यापुरी में श्रीराम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां बड़े उत्साह के साथ की जा रही हैं। कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ जिस व्यक्ति को जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो पल भर में ही हो जाता है, मानो उस व्यक्ति ने वो काम पहले से ही कर रखा हो। राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही पूरे अवध में बधावे बजने लगे। अयोध्या के महल में श्री राम तथा सीता जी को अंग फड़कने के साथ शुभ शकुन की सूचना मिलने लगी। इन शकुनों को वे भरत के, जो अपने ननिहाल गए हुए थे, अयोध्या आगमन की सूचना का संकेत मानते हैं। रनिवास में हर्षोल्लास व्याप्त है। जिस सेवक ने अंतपुर में सबसे पहले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाया उसे ढेर सारे आभूषण तथा वस्त्रों का पुरस्कार मिला। रानी सुमित्रा ने रत्नों के मनोहर चौक पुराए तो माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी। ग्राम देवी देवताओं तथा नागों की पूजा की और पुत्र श्री राम के कल्याण का वरदान मांगा। अवध नरेश ने मुनिवर वशिष्ठ को आमंत्रित कर उनसे श्री राम को समयोचित उपदेश देने की प्रार्थना की।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी देते हमारे केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की।

7:10 पर आप सुनेंगे सुबह सुहानी कार्यक्रम। हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ ब्याग आप सुन पाएंगे 7:40 पर। देश और दुनिया का ताजा हाल समाचारों से आप जान सकते हैं सुबह 8 बजे समाचार प्रभात में, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, इसके अलावा दिन में 1 बजे, शाम 5 बजे, शाम 7 बजे, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे News@9 और सभा के अंत में रात्रि 11 बजे। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे गाने सुहानी प्रोग्राम और सुबह 9 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि। प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से सुने जा सकते हैं सुबह 9:20 पर, सुबह 11 बजे, दिन में 3 बजे, शाम 6 बजे और 7:45 पर। ये प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। गीतों का कारवां ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे सुबह 10 बजे। 10:30 पर सुनिएगा पहाड़ी लोक संगीत कार्यक्रम, रहेगा पहाड़ों के सुर। 11:05 पर हम आपको सुनवाएंगे कवालियां। 11:30 पर सुना जा सकता है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सैनिकों के लिए कार्यक्रम लेकर हाजिर होते हैं हम दिन में 12 बजे और 12:30 पर आप सुन पाएंगे सुनो सखी कार्यक्रम। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5 बजे तक आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रमों का। शाम 5:10 पर हम आपको सुनवाएंगे सायंकालीन भजन और 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच। 6:05 पर सुनिएगा सुरमई सांझ कार्यक्रम और 6:30 पर होगा मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम। 7:10 पर आप सुनेंगे खेतीबाड़ी कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे हम आपको सुनवाते हैं विभिन्न गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस और 8:30 पर सुन पाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे एक ही कलाकार कार्यक्रम और 9:30 आप सुनेंगे चर्चा का विषय कार्यक्रम जो कि आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे नाटक और 10:30 पर सुनना ना भूले फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से हमारी आज की प्रसारण सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पे अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रशासनेन उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अन्तर्गतं एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्र तन्त्रस्य अन्तर्गतं उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमेव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब

का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप है आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। जी हाँ, जहाँ लेकर आ गए हैं हम प्रोग्राम सुबह सुहानी। आज की सुबह तो देखो कितनी सुहानी है, चारों ओर बहारे हैं, मौसम में छाई रोमानियत है, रिमझिम बरसती पानी की बूंदे, और ऐसे में सभी का दिल खिलखिला उठा है। तो चलिए इस प्यारे से एहसास को यूं ही बरकरार रखते हैं और आगाज करते हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम का इस सुविचार के साथ। श्रोताओं, जीवन खूबसूरती इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसे कैसे देखते हैं। आपकी सोच, आपका नजरिया ही आपके जीवन को खुशहाल बनाता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचे और सदा सकारात्मक बने रहे। तो चलिए इसी सोच को आगे लेकर चलते हैं और प्रोग्राम में सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत। आप यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर।

जी हाँ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम। हाथों में चाय की प्याली, खिड़की से खूबसूरत से बहारों के नजारे, और ऐसे में प्रोग्राम चल रहा है सुबह सुहानी। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं आज विशेष के साथ, और आपको बताते हैं कि आज है 1 जुलाई का दिन, और हम सभी जानते हैं कि हर दिन की कुछ खास बातें रहती है, कुछ खास कहानियां रहती है जो उस दिन को और भी अधिक विशेष बनाती है। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई कुछ बातों को जो इस दिन के महत्व को और भी अधिक बढ़ा देती है। आपको बता दें कि 1 जुलाई 1878 में भारत और ब्रिटेन के बीच पहला डाक टिकट आज जारी हुआ था। वर्ष 1955 में भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। वहीं 1 जुलाई 1997 में चीन को हांगकांग का प्रशासनिक नियंत्रण सौंपा गया, जिसके बाद हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बन गया। वर्ष 2017 में भारत में सबसे बड़ा कर सुधार वस्तु एवं सेवा कर यानी GST आधी रात से आज ही के दिन लागू हुआ था। वहीं वर्ष 2024 में आज ही के दिन भारत में औपनिवेशिक कानून को बदलने वाले 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए। बात करें आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की, तो आपको बता दें कि 1 जुलाई 1882 को जन्म हुआ महान स्वतंत्रता सेनानी व चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का। 1 जुलाई 1927 में जन्म हुआ भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का। वहीं साल 1938 में आज ही के दिन जन्म हुआ प्रसिद्ध बांसुरी वादक व संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया का। जी हाँ, सुबह सुहानी प्रोग्राम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहने वाला है, लेकिन साथ ही साथ कुछ प्यारे प्यारे से गीत भी हम आप सभी के लिए रोजाना प्ले करते हैं ना। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप बने हुए हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र के साथ और प्रोग्राम चल रहा है सुबह सुहानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, जो कि भारत में हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान देने वाले डॉक्टरों के प्रति आभार और सम्मान प्रकट करने के लिए समर्पित है। डॉक्टर्स इंसान के रूप में वो फरिश्ते होते हैं जो किसी के अनमोल जीवन को बचाने का काम करते हैं। जब सांसें भी मनुष्य का साथ छोड़ने लगती है, उस वक्त डॉक्टर्स भगवान के रूप में लोगों का इलाज कर उनका जीवन बचाते हैं। जी हाँ, ये दिन भारत के महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ और 1 जुलाई 1962 में उनकी मृत्यु हुई। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1 जुलाई 1991 में की गई थी। तभी से ये दिन डॉक्टरों द्वारा किए गए कार्यों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मनाया जाने लगा। सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र के साथ, और जहां हम शुरुआत में ही आपसे वादा कर चुके हैं कि आपका दिन हम बेहद ही खूबसूरत से बनाने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: हम पकड़ेंगे।
1: छोड़ो ना।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: ऐसे तो नाजुक नहीं।
2: जी हाँ दोस्तों, हम तो आपका मनोरंजन करने का पूरा वादा निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार जो है ना वो गीत हमारा साथ नहीं दे पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानकारियों का सिलसिला तो हम यूं ही बरकरार रख सकते हैं ना। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हम मना रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह। जी हाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों तरफ फैली हरियाली और घने जंगल भला किसे पसंद नहीं होते, लेकिन हमारे चारों ओर फैली ये हरियाली तभी कायम रहेगी जब हम इनका ख्याल रखेंगे और उन्हें बरकरार रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। इसी के मद्देनजर हम मना रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह, जो हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाने वाला वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है। इसके द्वारा लोगों में वनों के संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री K.M. मुंशी द्वारा की गई थी। इस महोत्सव के दौरान देश भर के स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और NGO द्वारा मिलकर वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि एक पौधा माँ के नाम जैसे अभियानों के तहत लोगों को पेड़ लगाने के प्रति जागरूक किया जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पेड़ हमारे जीवन का आधार है। ये ना केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि बारिश के साथ जो है वो मिट्टी कटाव को रोकते हैं, क्लाइमेट चेंज से होने वाले प्रभावों को कम करते हैं और ना जाने हमारे दैनिक जीवन में कितनी ही चीज़ों में काम आते हैं। दोस्तों, जब हम सब ये बातें जानते हैं तो हमें अपने स्तर पर अपने घरों के आसपास जहां खाली जगह मिले वहां पेड़ लगाने चाहिए। ये सोचने के बजाय कि कोई दूसरा पेड़ लगा देगा, हमें खुद आगे आकर पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाते समय आप अपने जहन में उस व्यक्ति को रखें जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। यकीन मानिए, आप उस पेड़ का ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखना शुरू कर देंगे। तो देर किस बात की है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपने आसपास को हरियाली से भर दें, फिर देखिए आपका जीवन खुशियों से किस तरह से खिलखिला उठता है। बिल्कुल इस गीत के साथ जो अभी हम आपको सुनवाने वाले हैं।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं सुबह सुहानी प्रोग्राम और चलिए अब आपके लिए लेकर आए हैं हम कुछ न्यूज अपडेट्स। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कल से अमरनाथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की शुरुआत आज से इंग्लैंड में होने वाली है। बात करें फीफा वर्ल्ड कप की तो कल रात फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा कर सुपर 16 में जगह बना ली है। वहीं आज रात इंग्लैंड का मुकाबला कांगो से होने जा रहा है। तो चलिए चलते चलते आपको मौसम का हाल भी बताते चले। आपको बता दें कि मौसम ने तो है तो पूरी तरह से करवट ले ली है और देश के अन्य हिस्सों की तरह हिमाचल में भी मॉनसून की बारिश की शुरुआत हो चुकी है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत महसूस होने लगी है। वहीं आने वाले दिनों की अगर बात करें तो बारिश का ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आप पूरी तरह से तैयार हो जाए रिमझिम की हल्की फुहारों में भीगने के लिए। फिलहाल आकाशवाणी धर्मशाला से आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। यूं ही जुड़ी रहिए और मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला। प्रोग्राम है सुबह सुहानी।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन कल इस कार्यक्रम को हम और भी बेहतरीन बनाकर लेने वाले हैं।

0: आप सभी के लिए, आप कहीं मत जाइए, यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर।
1: सुबह सुहानी।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हुए हैं। लीजिए पेश है शुभ ब्याह कार्यक्रम।

श्रोताओं, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं शुभ वैक कार्यक्रम का अगला लोकगीत आइए सुनिए लक्ष्मी देवी और राजेश की आवाजों में।

श्रोतो, इसी के साथ आज का शुभ ब्याह कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं ये देश का गान।

अभी आप सुन रहे थे देशकान। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। देश और दुनिया का ताजा हाल जानने के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो समाचार प्रभात के लिए। 8:30 पर 15 मिनट पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपए, गोवा में 406 रूपए और केरल में 401 रूपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय

0: योग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
1: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
5: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल

0: रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय यूपी TET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है PM की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर PM ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी जानी पहचानी सी रेडियो फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ, सुबह के 8:30 हो चुके हैं और लेकर आ गए हैं हम प्रोग्राम गाने सुहाने। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं कुछ ऐसे गीत जो आपके मन को तरोताज़ा कर देते हैं, जिन्हें सुनने के बाद आपके मन में कई हलचल सी मच जाती है और फिर आपको किसी अपने की याद आ जाए। ऐसे ही गाने लेकर आए हैं आज के इस प्रोग्राम गाने सुहाने में। तो इसे सुनने के लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। प्रोग्राम है गाने सुहाने। आज के गाने सुहाने प्रोग्राम की शुरुआत की है जसपिंदर निरियोला, प्रीति उत्तम की आवाजों में। फिल्म है पिंजर।

जी हाँ दोस्तों, दिल की उड़ारियों को भला कौन रोक सकता है। ये दिल जब खुशियों से झूमने लगता है तो उसे अपने आसपास ऐसी ही धुनें सुनाई देती है जिसे सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाता। तो चलिए ऐसा ही एक प्यारा सा और गाना आप सभी को सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म है मन। प्रोग्राम इस वक्त आप सुन रहे हैं गाने सुहाने।

जी हाँ दोस्तों, प्यारे प्यारे से फिल्मी तरानों पर इस वक्त आप झूम रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और प्रोग्राम सुन रहे हैं गाने सुहाने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज है और फिल्म है जीत।

गाने सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। प्रोग्राम का अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और अभिजीत की आवाजों में। फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं गाने सुहानी प्रोग्राम, और कार्यक्रम में जो आखिरी गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है उदित नारायण की आवाजों में। इसे हमने लिया है फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से।

जी श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का गाने सुहाने प्रोग्राम यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर।

रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त नीमा शर्मा के साथ। तो चलिए भाई, तैयार हो जाइए एक और खूबसूरत सफर पर चलने के लिए हमारे साथ, जहां कुछ बातें होगी उन पहले पहले एहसासों की जो हम और आप एक साथ मिलकर शेयर करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ रिमझिम फुहारी होगी गीत संगीत की। आप जान ही गए होंगे कि आज के इस कार्यक्रम में आपसे बात होने वाली है पहली पहली बरसात की। वेल दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पहली बरसात का मौसम बेहद ही रोमांटिक और ताजगी भरा होता है। इसमें भीगना एक जादुई एहसास सा होता है जो गर्मी से राहत देने के साथ साथ मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और सुकून लेकर आता है हम सभी के लिए और हमारे तन मन को ताजगी से भर देता है। तो चलिए इस ताजगी को यूं ही बरकरार रखेंगे, साथ ही साथ आपके लिए प्ले करेंगे कुछ बेहद ही प्यारे प्यारे से गीत, और इसके लिए आप सुनते रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र को और साथ ही साथ मुस्कुराते रहिए।

जी हाँ, छम छम आप नाच रहे हैं इस पहली पहली बरसात की बारिश में। प्रोग्राम चल रहा है गीतांजलि। दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे बरसात की पहली बारिश अच्छी ना लगती हो, और लगे भी क्यों ना, क्योंकि बारिश के साथ सभी का दिल खिल उठता है और बरसात लेकर आती है खूब सारी बहारें। हम भी खो से जाते हैं उन खूबसूरत नज़ारों को देखने में जो हमें मिलते हैं इस पहली पहली बारिश में देखने को।

103.4 MHz पर आप है आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ और इस वक्त आप सुन रहे हैं गीतांजलि प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम में आपसे बात हो रही है बरसात की पहली बारिश की। जी हाँ दोस्तों, बरसात की पहली पहली बारिश के बाद जब हरे भरे पेड़ और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ ओढ़ लेते हैं धुंध की सफ़ेद चादर, तो हर किसी पर छाने लगता है एक ऐसा फितूर मानो धरती और आकाश इस पहली बारिश में एक होने चले हों।

श्रोताओं, गीतांजलि कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का। 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। और प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से 9:30 पर आप सुन सकते हैं गीतांजलि कार्यक्रम।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य न निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के तहत संशोधित दरें आज से होगी लागू। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अनेक वर्गों के लिए कारगर हो रही साबित। चंबा जिला के राजकीय महाविद्यालय भलई को मर्ज करने पर लोगों में भारी रोष। 9 जुलाई तक फैसला वापस न लेने पर चक्का।

0: जमकर आंदोलन की दी चेतावनी। और प्रदेश में मॉनसून के दस्तक देते ही कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये दर बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार 300 रुपये प्रतिदिन का अंतरिम आधार पारिश्रमिक दर लागू किया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अधिसूचित दर इससे कम न हो। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपये से बढ़ाकर वीबी जीरामजी के तहत 327.40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार मजदूरी दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15-25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांव की समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि की समृद्धि में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिकित्सकों का कठिन परिश्रम और प्रतिबद्धता देश की स्वास्थ्य सेवा का धार है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक के दौरान भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बच्चों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है और उनके सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए राज्य में अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। ये जानकारी उन्होंने जिला ऊना बाल कल्याण कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष ओंकार कपिला से एक शिष्टाचार भेंट के दौरान दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को न्याय दिलाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और समाज में जागरूकता लाने के लिए कमेटी को निष्ठापूर्वक कार्य करने पर बल दिया। ओंकार कपिला ने भरोसा दिलाया कि वे सरकार की नीतियों के अनुसार बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करेंगे। चंबा जिला के भलई में चल रहे राजकीय महाविद्यालय को बंद कर प्रदेश सरकार ने चंबा महाविद्यालय में मर्ज कर दिया है, जिससे इलाके के लोगों में भारी रोष है। सभी पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इसे पुनः बहाल करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की कि यदि जल्द कॉलेज को दोबारा शुरू करने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो 9 जुलाई को भलई चंबा मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर आंदोलन किया जाएगा। वही आगामी विधानसभा चुनावों का भी बहिष्कार किया जाएगा।
1: नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं भलई पंचायत का निवासी हूँ। वो जो भलई कॉलेज के जो मर्ज नोटिफिकेशन आई है, हम चाहते हैं कि वो मर्ज ना हो और वो अपने पुराने रूप में ही भलई में ही चलता रहे। ऐसा नहीं था कि वहाँ एडमिशन नहीं हो रही थी और बहुत सारे बच्चे वहाँ से पास आउट होके गए हैं, जहाँ जिसमें मैक्सिमम लड़कियां थी। ऐसे बच्चे थे जो बाहर जाके नहीं पढ़ सकते थे या बाहर वो इतना खर्चा नहीं उठा सकते थे। हमारी जो हडला पंचायत लगती है पीछे कंगेड़, नडल, जुतरन, वहां से भी बच्चे उस कॉलेज में आ रहे थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से, प्रशासनिक कारणों से इस कॉलेज को उन्होंने मर्ज कर दिया। और सबसे बड़ा जो कारण था वो था स्टाफ की कमी। अब एक प्रोफेसर के सहारे कॉलेज नहीं चल सकता। जिस टाइम 3 प्रोफेसर थे तो स्ट्रेंथ भी 160 थी। तो भाई कारण आप लोग हो, कोई आपने वहां पे स्टाफ नहीं दिया। स्टाफ होता तो शायद आज उसकी वहां पे स्ट्रेंथ 300-400 तक होती। और अगर ये मर्ज होने वाली नोटिफिकेशन गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है तो 9 तारीख को हम पूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे।
2: मेरा नाम पूजा है और मैं भलई से रहने वाली हूँ और ये हमारा जो कॉलेज है वो मर्ज कर दिया गया है और हमें दोबारा से इस कॉलेज की जरूरत है और खास करके लड़कियों के लिए बड़ा जरूरी है ये कॉलेज। हमारी लड़कियां दूर नहीं जा सकती, अगर जाती है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए हमें ये कॉलेज दोबारा से वापिस चाहिए और स्टाफ के साथ।
3: मित्रा देवी है, मैं भलई पंचायत से हूँ और हमारा भलई कॉलेज बंद होने की बहुत समस्या आ रही है कि हमारे गरीब घर की जितनी भी लड़कियां हैं वो बाहर नहीं पढ़ सकती क्योंकि उनसे खर्चा नहीं उठ सकता है। और प्रशासन से भी और सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है दो हाथ जोड़ के कि हमारी सहयोग करें और हमारा कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए।

0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AARNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी CBSE स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति पर फैसले से संबंधित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज शिमला में आयोजित की जाएगी। ये बैठक उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में होगी। गौरतलब है कि 158 CBSE स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्तियां करने को शिक्षा बोर्ड के माध्यम से परीक्षा ली गई थी। इस बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और नगर और ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी शामिल होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना आज प्रदेश के अनेक निराश्रित बच्चों और युवाओं के लिए सहारा बन रही है। इस योजना के अंतर्गत 0 से 27 वर्ष तक के युवाओं के लिए उनके पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा और उच्च शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
1: कुल्लू जिला किला घाटी के शालंग गांव के 24 वर्षीय सीताराम के सिर से माता पिता का साया उठ चुका था तथा सामने भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित दिखाई देता था। ऐसे समय में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना उनके लिए आशा की किरण बनकर सामने आई। सीताराम बताते हैं कि सरकार ने उनके लिए अभिभावक की भूमिका निभाई। योजना के तहत उन्हें अपना घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। इसके साथ ही स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा उन्हें राफ्टिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाया गया ताकि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: प्रदेश के 7 जिलों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश का दौर जारी है। इस बार मॉनसून सामान्य के मुकाबले कुछ दिन देरी से पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मॉनसून की सक्रिय शुरुआत को देखते हुए आगामी 4 दिनों तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल पहुंचा मॉनसून, कई इलाकों में बरसे बादल, आज से भारी बारिश का येलो अलर्ट। पंजाब केसरी की खबर है, आपत्ति के बावजूद हिमाचल सरकार आज से लागू करेगी VBG रामजी योजना। आउटसोर्स कंपनी पर गिरी गाज, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, खाद्य सुरक्षा एवं विनियम निदेशालय ने लिया कड़ा फैसला। मुख्यमंत्री के हवाले से दैनिक भास्कर ने सुर्खी दी है, हमीरपुर जिले के नेरी में बन रहा देश का पहला स्वदेशी बायोचार प्लांट, प्रदेश को मिल सकते हैं 28,800 कार्बन क्रेडिट। दैनिक जागरण की खबर है, आउटसोर्स नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की मंजूरी अनिवार्य। मनीषा मित्तल हत्या केस पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, भाई हिमांक निकला मर्डर का मास्टर माइंड। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत संशोधित दरें आज से होगी लागू। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना अनेक वर्गों के लिए कारगर हो रही साबित। चंबा जिला के राजकीय महाविद्यालय भलई को मर्ज करने पर लोगों में भारी रोष, 9 जुलाई तक फैसला वापस न लेने पर चक्का जाम कर आंदोलन की दी चेतावनी। और प्रदेश में मॉनसून के दस्तक देते ही कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोतो, प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के गीतांजलि प्रोग्राम में।

आज के इस प्रोग्राम में आपसे बात हो रही है पहली पहली बरसात की। जी हाँ, बरसात की पहली बारिश का जादुई एहसास हर किसी के दिल को छू जाता है कुछ इस तरह से। और ऐसे ही कुछ प्यारे प्यारे से गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है? भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
0: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं गीतांजलि प्रोग्राम।

जी हाँ श्रोताओ, इस वक्त आप सुन रहे हैं गीतांजलि प्रोग्राम, और आज के इस प्रोग्राम में आपसे बात हो रही है बरसात की पहली बारिश की। दोस्तों, बचपन में बरसात की पहली बारिश में भीगने

पहली जो बरसात की बारिश होती है ना, वो हमें बचपन के उस दौर में ले जाती है जहाँ पर हम इस मौसम में कागज़ की कश्तियाँ बनाकर अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, और उन मासूम दिनों की ये याद हमें दिलाती है बरसात की पहली पहली बारिश। जी हाँ, इस बारिश में दिल भी कुछ यूं मेहरबान सा हो जाता है।

जी हाँ, ये रब की मेहरबानियां ही है कि इतना खूबसूरत सा मौसम हुआ है और बरसात की पहली पहली बारिश। आप सभी भी एंजॉय कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र को, और बने रहिए हमारे साथ।

इसी प्यारे से गीत के साथ आज का गीतांजलि कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि कुछ ही पलों में शुरू होने जा रहा है गीतों का कारवां कार्यक्रम।

बाहर बरसात की बूंदें और आपके साथ हमारा ये खूबसूरत संगीत का सफर यानी गीतों का कारवा लेकर हाजिर हूं मैं मीनाक्षी। शुरुआत कर रहे हैं फिल्म ताल के इस गीत के साथ, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

गीतों के कारवां के इस सफर में आप हैं मेरे साथ यानी मीनाक्षी के साथ, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ खामोशियां शब्दों से ज्यादा बोलती हैं और कुछ तन्हाइयां इंसान को खुद से मिला देती हैं। फिल्म लेकिन का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार गुलजार और संगीतकार हैं हृदयनाथ गुलजार।

हर किसी को अपना हाल सुनाया नहीं जाता, दर्द जब गहरा हो तो जताया नहीं जाता। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म चलते चलते का ये गीत, सुखविंदर सिंह की आवाज में। संगीत है आदेश श्रीवास्तव का और बोल लिखे हैं पप्पू ढिल्लो और बब्बू मान ने।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 10:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे पहाड़ों के सुर।

श्रोताओ, पहाड़ों के सुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये पहाड़ी सुर आपको सुनवा रहे हैं मंजू चिश्ती की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे हिमाचली गीतों और लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये दर बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार 300 रुपये प्रतिदिन का अंतरिम आधार पारिश्रमिक दर लागू किया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अधिसूचित दर इससे कम न हो। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपये से बढ़ाकर वीबी जी राम जी के तहत 327.40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार मजदूरी दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस संशोधन को गांवों की समृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिकित्सकों का कठिन परिश्रम और प्रतिबद्धता देश की स्वास्थ्य सेवा का

0: आधार है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक के दौरान भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबूत हुई है। प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति पर फैसले से संबंधित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज शिमला में आयोजित की जाएगी। ये बैठक उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में होगी। गौरतलब है कि 158 सीबीएसई स्कूलों में सेवारत शिक्षकों की नियुक्तियां करने को शिक्षा बोर्ड के माध्यम से परीक्षा ली गई थी। इस बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और नगर तथा ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी शामिल होंगे। चंबा जिला के भलेई में चल रही राजकीय महाविद्यालय को बंद कर प्रदेश सरकार ने चंबा महाविद्यालय में मर्ज कर दिया है, जिससे इलाके के लोगों में भारी रोष है। सभी पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इसे पुनः बहाल करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की कि यदि जल्द कॉलेज को दोबारा शुरू करने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो 9 जुलाई को भलेई चंबा मुख्य सड़क पर चक्का जाम कर आंदोलन किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों का भी बहिष्कार किया जाएगा।
1: नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं भलेई पंचायत का निवासी हूँ। वो जो भलेई कॉलेज के जो मर्ज नोटिफिकेशन आई है, हम चाहते हैं कि वो मर्ज ना हो और वो अपने पुराने रूप में ही भलेई में ही चलता रहे। ऐसा नहीं थी कि वहाँ एडमिशन नहीं हो रही थी और बहुत सारे बच्चे वहाँ से पास आउट होके गए हैं, जहाँ जिसमें मैक्सिमम लड़कियां थी। ऐसे बच्चे थे जो बाहर जाके नहीं पढ़ सकते थे या बाहर वो इतना खर्चा नहीं उठा सकते थे। हमारी जो हडला पंचायत लगती है पीछे, कंगेड़, नडल, जुतरन, वहां से भी बच्चे उस कॉलेज में आ रहे थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से, प्रशासनिक कारणों से इस कॉलेज को उन्होंने मर्ज कर दिया। और सबसे बड़ा जो कारण था वो था स्टाफ की कमी। अब एक प्रोफेसर के सहारे कॉलेज नहीं चल सकता। जिस टाइम 3 प्रोफेसर थे तो स्ट्रेंथ भी 160 थी। तो भाई कारण आप लोग हो, कोई आपने वहां पे स्टाफ नहीं दिया। स्टाफ होता तो शायद आज उसकी वहां पे स्ट्रेंथ 300-400 तक होती। और अगर ये मर्ज होने वाली नोटिफिकेशन गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है तो 9 तारीख को हम पूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे।
0: नगर निगम धर्मशाला के महापौर एवं उपमहापौर पद के निर्वाचन के लिए आज पुनः बैठक आयोजित की जाएगी। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 29 जून को आयोजित बैठक में नगर निगम धर्मशाला के नव निर्वाचित पार्षदों के शपथ दिलाई गई थी, लेकिन महापौर एवं उपमहापौर का चुनाव आवश्यक कोरम पूरा न होने के कारण सम्पन्न नहीं हो सका था। प्रदेश के 7 जिलों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश का दौर जारी है। इस बार मॉनसून सामान्य के मुकाबले कुछ दिन देरी से पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने मॉनसून की सक्रिय शुरुआत को देखते हुए आगामी 4 दिनों तक येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कवालियां। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म अमर अकबर एंथनी की इस कवाली के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और साथियों ने।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूब सूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: बज उठे शहनाइयां, महके दुआओं का जहां, मुस्कुराए हर चेहरा, रोशन हो हर कारवां। इन्हीं खूबसूरत जज्बातों के साथ पेश है दूल्हे का सेहरा सुहाना ये गीत। गीत को गाया है नुसरत फतेह अली खान ने, और फिल्म है धड़कन।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कवालियाँ। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। 11:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं NCERT प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति

0: वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
0: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
1: और पुणे से सुयोग बटवे।
0: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
0: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं, और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
0: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
1: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
0: जी,
1: मूल्यवान भी है, रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
0: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है।
0: जी?
1: तो विमलेश जी, आप जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
0: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
1: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
0: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार, अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
1: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
0: जी,
1: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
0: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
0: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए।
0: जी।
1: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
0: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं, और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
1: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
0: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
1: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से

0: सोना बना सकते हैं, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है,
1: जी
0: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोने को स्टारडस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की।
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहाँ शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
5: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
5: वाह, क्या बात है
6: मैम।
5: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
5: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
5: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
5: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
5: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
5: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
5: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह, सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
5: बिल्कुल, जरूर बताएंगे।

0: अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
1: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहां से कहां तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
1: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: हाँ, जी मैम।
5: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
3: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
5: धन्यवाद मैम।
6: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम

0: पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
2: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए है ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना। मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना। ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।

0: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
1: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
0: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
1: अरे भाई, ये भी कोई
0: इस समय है? कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
1: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है बोलो।
1: मैं बोलो। अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो। गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
2: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
0: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करे? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया है अनाज मांगने वाले, करो।
3: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
4: मुखिया जी, मुखिया जी!
5: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
4: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
5: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
4: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
5: तो भरने दो।
4: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
5: अरे तो जाने दो।
4: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
5: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है और ये हमारी बांसुरी भी है।
4: लेकिन मुखिया जी,
5: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
4: जी मगर
5: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
6: मुखिया जी,
5: अब क्या है?
6: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
5: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
2: मुखिया जी,
5: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
2: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
5: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
2: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है। हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
5: नालायक, डरपोक! अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से। जाओ तुम लोग, मैं यहीं रहूंगा।
2: जैसी आपकी मर्जी।
5: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, हे भगवान।

अरे कहाँ जाऊँ मैं ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है अरे बचाओ मुझे, अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर पहुंच ही गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन न जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। एक 103.4 मेगाहर्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। जी हां, दिन के 12 बज चुके हैं और इस वक्त हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। रोजाना की तरह लेकर आ गए हैं हम आज भी आप सभी के मनोरंजन के लिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हम इस गीत के साथ।

0: हूँ HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: दूर सरहदों पर बैठे फौजी भाई जो देश की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, उनके लिए लेकर आते हैं हम रोजाना सैनिकों के लिए कार्यक्रम।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और प्रोग्राम का अगला जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है राहत फतेह अली खान की आवाज में, फिल्म है लव आजकल।

चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक जानकारी आप सभी से साझा कर दे। इस रविवार दिनांक 5 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच प्रसारित होने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा, मॉनसून में बच्चों की सेहत का कैसे रखें ध्यान। इस विषय में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर पुनीत आनंद, बाल रोग विशेषज्ञ। इसके विषय में आप जानकारी ले सकते हैं 5 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। जानकारी हासिल करने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर रहेगा 01892224391। फ़ोन नंबर एक बार फिर से दोहरा दें, 01892224391। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो सखी।

जहाँ चमकता है हर सितारा, खुलता है खूबसूरती और हमारी बातों का पिटारा, होता है कुछ अलग ही नज़ारा, और इन सब को मिलाकर बनता है हमारा ग्लैमर गलियारा। तो कार्यक्रम सुनो सखी के इस खास अंक में, यानी कि ग्लैमर गलियारा में, हमारी सभी श्रोता सखियों को आपकी आरजे यानी कि रेडियो जॉकी मीनाक्षी की नमस्ते। स्वागत है सखियों आप सभी का आपके इस अपने कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं उस दुनिया की जो चमकती भी है, चमकाती भी है और हमें हर दिन कुछ नया सिखाती भी है। लेकिन उससे पहले हमारी सभी श्रोता सखियों को आज के इस खास दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सखियों आज है 1 जुलाई और आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। हर वर्ष 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। इस दिन को भारत के महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और संयोग से उनका निधन भी 1 जुलाई 1982

को हुआ। शुरुआत कैसे हुई इस दिन की? भारत सरकार ने 1991 में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के चिकित्सक क्षेत्र में असाधारण योगदान और देश भर के डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा को सम्मान देने के लिए 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। आज पूरा देश राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मना रहा है। ये दिन महान चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की स्मृति को समर्पित है। ये अवसर उन सभी डॉक्टरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का है जो दिन रात लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा में समर्पित रहते हैं। आइए सभी चिकित्सकों को दिल से नमन करें। और सखियों, चमकते सितारों को देखकर हम लोग वाह वाह जरूर करते हैं, मगर उनकी रातों की मेहनत कोई नहीं देखता। और जब भी ग्लैमर शब्द हमारे कानों में गूंजता है तो मन में खूबसूरत चेहरे, शानदार कपड़े और बड़ी बड़ी रोशनियां आ जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ग्लैमर सिर्फ अच्छा दिखना है? और इसका जवाब ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ग्लैमर का असली मतलब है आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, अनुशासन और खुद को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करना। और सखियो, कहते भी हैं कि चेहरे की चमक से नहीं, इरादों से पहचान होती है। ग्लैमर वहीं टिकता है जहां मेहनत में जान होती है।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गीत और विज्ञापन के बाद फिर से स्वागत है हमारी सभी श्रोता सखियों का ग्लैमर गलियारा में। और सखियों, अगर हम भी खुद को ग्लैमरस बनाना चाहती हैं तो इसके लिए हमें मेहनत भी खूब करनी होगी। किसी भी मॉडल, एंकर, फैशन डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट या फोटोग्राफर की सफलता के पीछे घंटों की तैयारी, अभ्यास, धैर्य और कड़ी मेहनत होती है। कई बार कैमरे में हम देखते हैं कि बड़ी सहजता और सरलता से सब कुछ हो रहा है, लेकिन कैमरे के सामने जो दिखता है वह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल में मेहनत तो कैमरे के पीछे होती है। एक सुंदर फोटो खिंचवाने के लिए कई बार दर्जनों तस्वीरें ली जाती हैं, एक फैशन शो के लिए कई दिनों तक तैयारी चलती है और अकेला इंसान सब कुछ एक साथ नहीं संभाल पाता। और इन खास लम्हों को यादगार बनाने के लिए, या यूं कहें कि ग्लैमर की दुनिया में सितारों को चमकाने के लिए, बहुत से लोगों का सहयोग रहता है। स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर एक्सपर्ट, लाइटनिंग टीम, फोटोग्राफर, मॉडल, ड्रेस डिज़ाइनर, हर कोई मिलकर उस एक पल को यादगार बनाता है। और ग्लैमर की दुनिया बिना मेहनत के पूरी नहीं होती, क्योंकि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए पहले खुद को तपाना पड़ता है। तो सखियों, बातें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल हम अपनी बातों को देंगे थोड़ा सा विराम, क्योंकि वक्त हो रहा है हमारी सखियों के मनोरंजन का। तो आइए साथ में मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: खूबसूरत से गीत और विज्ञापन के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारी सभी श्रोता सखियों का ग्लैमर गलियारा में। सखियों आज ग्लैमर सिर्फ बड़े मंचों तक सीमित नहीं है, अब किसी छोटे शहर का हुनर भी पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, पॉडकास्ट, कंटेंट क्रिएशन, फैशन से जुड़ी ब्लॉगिंग और लाइफस्टाइल फोटोग्राफी ने नई प्रतिभाओं को पहचान दी है। ग्लैमर का मतलब केवल फैशन नहीं है, बल्कि अपनी भाषा, व्यवहार, सोच और व्यक्तित्व में भी निखार लाना है। सच्चा ग्लैमर वही है जिसमें विनम्रता हो, आत्मविश्वास हो और दूसरों के प्रति सम्मान हो। एक सफल फोटोशूट के लिए सिर्फ एक कैमरा ही नहीं, बल्कि सही रोशनी, सही एंगल और सही टाइमिंग भी बेहद ज़रूरी होती है। एक बड़े फैशन इवेंट की तैयारी कई हफ्तों पहले शुरू हो जाती है। कपड़ों के रंग से लेकर मंच की रोशनी तक हर छोटी बड़ी बात पर घंटों काम होता है, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया में छोटी सी बारीकी भी बड़ी पहचान बन सकती है। और दुनिया में बड़े फैशन आयोजनों में सिर्फ कपड़ों पर ही नहीं, बल्कि मंच की सजावट, संगीत, रोशनी और प्रस्तुति पर भी महीनों पहले से काम शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया में हर छोटी सी बारीकी भी कहानी बड़ी बन जाती है। रंगों से नहीं, विचारों से खूबसूरती आती है। सच्ची मुस्कान ही हर दिल को भाती है। जो खुद से प्यार करना सीख जाए उसकी दुनिया खुद ब खुद जगमगाती है। सखियों फैशन हर मौसम के साथ बदलता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती और वह है आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास है तो साधारण कपड़े भी खास लगते हैं। आज का दौर आराम, सादगी और पर्यावरण के प्रति जागरूक फैशन का है। लोग ऐसे परिधान पसंद कर रहे हैं जो सुंदर होने के साथ साथ टिकाऊ भी हो। सखियों फैशन किसी की नकल करना नहीं है, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाना है। और एक बात हमें और याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि लोकप्रिय होना आसान है, लेकिन सम्मान पाना बेहद मुश्किल। और सम्मान हमेशा अच्छे काम और अच्छे व्यवहार से मिलता है। खूबसूरती कुछ समय के लिए आकर्षित करती है, लेकिन अच्छा व्यक्तित्व जीवन भर याद रहता है। ग्लैमर का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, बल्कि अच्छा सोचना भी है। जहां सफलता हो वहां विनम्रता भी हो, जहां प्रसिद्धि हो वहां जिम्मेदारी भी हो, यही असली ग्लैमर है। जो सितारे आसमान में चमकते हैं वो पहले अंधेरों से ही लड़ते हैं। कामयाबी यूं ही नहीं मिलती सखियों, उसके पीछे हजारों सपने पलते हैं।

इसी गीत के साथ सखियों समय हो गया आपसे विदा लेने का, तो मुझे यानी मीनाक्षी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है।

0: introduce a new theatrical language, fresh perspectives, and a globally informed approach to Marathi stagecraft through the theatre groove Rangayan. Her landmark productions include Barrister, Sakharam Binder, Hamidabai Chi Koti, among others. As a teacher and mentor, she trained several generations of actors and theatre practitioners. Vijaya Mehta was honoured with the Sangeet Natak Academy Award in 1975. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the passing of the veteran theatre director and remembered her creativity and commitment to artistic excellence. Prime Minister Narendra Modi today hailed the efforts of doctors and medical professionals who are working in Venezuela as a part of Operation Amistad. In a social media post, he said that in such a challenging time, the efforts to serve those in need are shining examples of how medical professionals rise to the occasion every time the society faces a challenge. India launched Operation Amistad in response to devastating earthquakes in Venezuela that caused extensive loss of life, injuries and widespread destruction. Operation Amistad is a humanitarian assistance and disaster relief mission in a gesture of solidarity with the people of Venezuela. On the second day of the higher-level assessment tour, Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju, accompanied by Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu, conducted an aerial survey of flooded areas in the state today. And that is the end of this news bulletin.
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
2: दीजिए श्रोताओं, ये फिल्में भी कुछ इसी तरह की हैं, द ट्रेन और आगे भी जो फिल्में आप जिनके गीत आप सुनेंगे उन्हें आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपने वो फिल्में देखी हैं तो उनके बारे में आप बता भी सकते हैं कि उनमें क्या गलतफहमियां थीं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि गलतफहमियां भ्रम भ्रांति यानी जीवन का एक छुपा हुआ राज, जो प्यार मोहब्बत में बहुत खूबसूरत लगता है, जो रेत का समंदर यानी अधूरी चाहतें पूरी कर देता है, सुहाने सपने सजाता है, मन की उम्मीदें बढ़ाता है, कल्पना रम्य सुख देता है, प्यार का कोमल मोहक आनंद लुटाकर खुश कर देता है। गलत फहमी को खुश फहमी बना देने वाली आज की सकारात्मक इबारत है। और वो चांद मुस्कुराया और पलकों के पीछे क्या तूने कह डाला मुझसे भला काजल तेरा, रंग महल के दस्तरवाजे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत का मुख्य विषय भ्रम और यथार्थ तथा प्रेम की अनुभूति है। यहाँ तार्किक सत्य के बजाय खुश फहमियों के रोमांटिक संसार की को तरजीह दिया गया है, क्योंकि यही जीवन और प्रेम को जीने का हौसला देते हैं। भाषा बेहद काव्यात्मक, संवेदात्मक और उर्दू हिंदी के खूबसूरत मिश्रण जैसे जज्बात, ताबीरें, बदगुमानी इबारत ऐसे सजी है। इसमें गद्य होते हुए भी एक लय और संगीत है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज कहीं जाना है लेकिन गीत तो सुनती रहूंगी। एक गीत जिसका मुझे बहुत इंतजार रहेगा आपकी इबारत में ये शब्द रंग महल के दस्तरवाजे, तो देखते हैं और पलकों के पीछे भी इन्होंने चुना है, तो देखते हैं कौन कौन से गीत आज होते हैं शामिल। और एक और श्रोता ने चांद तो जब भी मुस्कुराता है, पलकों के पीछे से कचरारे कचरारे, ये दिल ना होता बेचारा, रंग महल। और एक और श्रोता जिन्होंने कुछ शब्द इसमें से चुने हैं, ये शब्द हैं कि चांद पलकों के पीछे, रंग महल, हसीना, चोरी चोरी, चुपके चुपके, शबनम, रेशम की डोर, दीप हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि नैनों में दर्पण है, चांद आहें भरेगा पलकों के पीछे से, और लाखों हैं निगाह में, इन्होंने भी बहुत सारे गीतों को पसंद किया है। तो अगला गीत आपको सुनवा देते हैं और आपको बताना है कि ये जो फिल्म है श्रोताओं, इसमें मुख्य अभिनेत्री कौन है। और कई बार आपको भी बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती होंगी। कभी दो अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनके कपड़ों को लेकर, कभी कोई गिफ्ट अदल बदल जाता है, कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, या फिर बहुत बड़ी गलतफहमियां देखने को मिलती हैं जब हम रेलवे के सफ़र पर होते हैं। तो ऐसी कुछ यादें अगर आपकी हैं तो आप हमसे ज़रूर साझा करें।

देवानंद साहब की एक बड़ी अजीब अदा इस गीत में नज़र आती है श्रोताओं। उनके हाथ में एक चीज़ है, क्या आप ने ध्यान दिया है तो आप हमें ज़रूर लिखकर बताएं। और एक अभिनेत्री जो नज़र आ रही हैं वो तो तनुजा हैं, दूसरी अभिनेत्री के बारे में हमने आपसे पूछा है तो आप हमें जल्दी से इसका जवाब भेज दें। और वैसे जो सवाल हमने पूछे हैं उसके बहुत सारे जवाब भी हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं अपने सभी श्रोताओं का हमारे गद्यांश को पढ़ने के लिए और उस पर कमेंट्स करने के लिए, अपने गीत और अपनी बातें हमसे साझा करने के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जीवन दर्शन की बहुत ही गहरी बात को एक रूपक के रूप में दर्शाया गया है। जिंदगी कोई गणित या सीधा समीकरण नहीं बल्कि भावनाओं, उम्मीदों और एहसासों से बुना हुआ एक ऐसा कैनवास है जहाँ खूबसूरत गलत फहमियाँ ही इसके रंग को जीवंत बनाती हैं। जीवन की कला इन्हीं कोमल भावनाओं और गलत फहमियों को संजोने में है। कभी कभी किसी बात को सकारात्मक रूप से मान लेना भले ही वो पूरी तरह से सच ना हो, जीवन को जीने योग्य और खूबसूरत बना देता है। गलत फहमियाँ अक्सर वे उम्मीदें और सपने होते हैं। तो एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती का सुरीला सफ़र, ये एक सफ़र कल कौन सी इबारत आएगी, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफ़र भी गलत फहमी और खुश फहमी के दो पहियों के बीच पिसता फंसता चला जाता है, चलता रहता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां विचारों, शब्दों या इरादे का गलत अर्थ गठन होता रहता है, कभी धूप तो कभी छांव। और इन्होंने एक और हमारी एक और श्रोता लिखती है कि चांद जाने कहाँ खो गया, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, हुस्न से भी शर्माया है। और कुछ गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि

आदमी की ज़िंदगी खुशफहमी और गलत फहमी से भरी हुई है। मुझे खुशफहमी रहती है कि मेरी कमेंट अच्छी है और आप पढ़ेंगी ज़रूर, लेकिन पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, आप कमेंट नहीं पढ़ती, तब महसूस होता है कि मैं कितनी बड़ी गलत फहमी में था। तो ये भी गलत फहमी हो सकती है आपको भी और मुझे भी, क्योंकि मैंने ऐसा मुझे याद पड़ता है मैंने कई बार आपकी कमेंट पढ़ी है, तो हो सकता है कि यहाँ भी कुछ गलत फहमी हो। बहरहाल जो गलत फहमियाँ हैं उन्हें मिटा देना ही ज़्यादा अच्छा होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत आज की इबारत की पहली लाइन, क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है? आपका जवाब इन गानों में मिल गया। जी हाँ, ये चांद सा रोशन चेहरा, शमी कपूर का रोमांस और चांद, क्या बात है। इन्होंने अपनी तरह से गीतों को चुना है। एक और श्रोता लिखती हैं कि अजीब कश्मकश है ये यकीन और गुमान के बीच, मैं खुद को तुझ में ढूंढती हूँ या तो मुझ में ठहर जाता है, अजब बंदिश अजब आज़ादी के दरमियाँ हूँ, किताब मैं तुझे पढ़ती हूँ कि तू मुझे पढ़ता है, क्या बात है। और इसी तरह का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं। शशि कपूर इस फिल्म में हैं और क्या रोल है उनका इस फिल्म में, क्या आप बता सकते हैं?

शशि कपूर एक इंजीनियर के किरदार में होते हैं श्रोताओं, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत। इस फिल्म में बड़ी अजब सी ये गलतफहमी थी जो चेहरे को लेकर थी, और अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। वल्लभ भाई पटेल का लिखा ये गीत था, लता मंगेशकर भूपेंद्र की आवाज़ें थीं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो चांद खिला, वो तारे हंसे, आँखों में काजल, नैनों में बदरा छाए, और बहुत सारे गीतों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की डोर को हकीकत से ज्यादा गलत फहमियाँ कमजोर करती हैं। सच्चाई और बातचीत के अभाव में पनपी ये अजब फहमियाँ करीबियों में दूरियां पैदा करती हैं। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहना कुछ था वो कुछ समझे, और मुझे कुछ और कहना था। जी हाँ, लेकिन अगर ये गलत फहमियाँ हो जाएं तो आप एक काम कर सकते हैं कि मोबाइल पर बात कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से ही कुछ मना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपके बीच कोई अनबन हो जाए तो आप एक दूसरे को किस तरह से मनाते हैं, ये गलत फहमियाँ किस तरह से दूर करते हैं, क्योंकि ये भी समझदारी की ही बात होती है। श्रोताओं, गलत फहमियों में कुछ रखा नहीं है, जो खुशफहमियाँ हैं वो और गलत फहमियाँ, इन दोनों में बड़ा बारीक सा रेशम के सा अंतर होता है, इसे पहचानने की ज़रूरत है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने, एक जब दीप जले आना जब शाम ढले जाना, दो दिल के टुकड़े टुकड़े करके, और इन्होंने भी अपनी जो एक लिस्ट है वो बनाई है। एक और श्रोता लिखती हैं, गलत फहमियाँ रिश्तों में दूरियाँ बढ़ाती हैं, जबकि खुशफहमियाँ मुस्कुराने का एक बहाना बन जाती हैं। जब मन की धुंध छट जाती है, बदगुमानी के बादल हट जाते हैं और विश्वास के दीप जल उठते हैं, तब मोहब्बत अपने असली रंग में खिलती है। लेकिन हर गलत फहमी बुरी नहीं होती, कुछ खुशफहमियाँ रिश्तों में महक बनकर रहती हैं, विरेत के समंदर में दूर दिखाई देती हैं, उस नमी की तरह जो भले ही हाथ में ना आए लेकिन सफर को उम्मीद और दिल को मुस्कान दे जाती है। जब रेत की बात है श्रोताओं, तो रेत में अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नदी है या समंदर है, इसे क्या कहते हैं? अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर बताएं। और एक और बात है कि कस्तूरी मृग जो है उसे हमेशा ये गलतफहमी होती है कि कस्तूरी कहीं और है, इस बारे में आप क्या जानते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। इस फिल्म में एक्ट्रेस के दो रोल को आपको बताना है नाम।

दो जुड़वा लड़कियों को लेकर जो ये फिल्म बनी थी, इसमें गजब का सस्पेंस था। श्रोताओं, मेरा साया फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। राजा मेहदी अली खां के बोलते मदन मोहन का संगीत था। और हमने आपसे पूछा था कि दो नाम कौन से थे अभिनेत्री साधना के, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा है वो भी ज़रूर हमें बताएं। और गीता और निशा, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म का कौन सा गीत आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? श्रोताओं, अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि रेल के सफ़र के दौरान बड़ी सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की हमारी जो इबारत है, मैं हमको तो पता भी नहीं चला कि हम चाँद से रेत पर आ गए और चाँद से रेत पर आ गए और बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार भी हुए हो गए, इस साजिश में कब फंसे पता भी नहीं चला। एक और श्रोता लिखते हैं कि ज्वेल थीफ का जो गीत हमने आपको सुनाया, उसमें मछली पकड़ने का कांटा और साथ में उसमें फंसी मछली है। जी हाँ, एक सवाल और पूछा था कि कौन है उसमें मुख्य अभिनेत्री, तो वैजयंती माला थी। एक और श्रोता ने लिखा है, अगर दिल से एहसास उम्मीदें और ये प्यारे भ्रम निकाल दिए जाएं तो जीवन एक अंतहीन रेत के समंदर जैसा बंजर हो जाएगा, जहां फैलाव तो बहुत होगा पर सुकून की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। वास्तव में हमारी कल्पनाएं ही इस रसीन जिंदगी में रस घोलती हैं, जैसे कस्तूरी अपनी खामोश खुशबू से पूरे माहौल को महका देती है, ठीक वैसे ही जज्बात इंसानी रिश्तों को जो हैं जिंदा रखते हैं। कभी कभी जिंदगी को मरुस्थल बनने से बचाने के लिए तर्कों को परे रखना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान दिल की गहराइयों से जुड़ता है तभी वो रिश्तों के असली रूप को जी पाता है और जीवन में प्रेम के दीप जलते हैं। क्या ही सुंदर बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं, इबारत के लिखने के दायित्व को सौंपने के क्रम में अग्रसर हो रही प्रस्तुत आज की इबारत मन के भेदों में निहित अंतर द्वंद्व को भली भांति स्पष्ट कर रही हैं, और इस दृष्टिकोण से ही आज की ये इबारत स्वयं में ही इबादत करने योग्य है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिश अधूरी, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां भी जरूरी हैं।

गलतफहमी भी श्रोताओं अपने आप में बड़ी खास होती है कि जिधर देखो बस एक ही तस्वीर नजर आती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप

बैठे कहीं और हैं, लेकिन आपको बस वही वो दिखता है या दिखती हैं, या दिखती हैं चीज़ें जिन्हें आप मन में सोच रहे होते हैं। मसलन जब आप समुंदर किनारे बैठते हैं,

इस गीत में श्रोताओं और इस फिल्म में सांपों के बारे में बहुत कुछ है या सांप के बारे में बहुत कुछ है। वैसे रस्सी और सांप, इनमें तो बहुत गलतफहमियां होती हैं। क्या आपको हुई हैं?

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खुशफहमियां और गलत फहमियों में के बीच क्या क्या होता है, दो दिलों में कैसी कैसी शरारतें पैदा होती हैं, तरह तरह के गीतों का मजा लेते हैं इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता लिखते हैं कि गलत फहमियां जिंदगी में अक्सर गलत फहमियां हो जाती हैं, कभी हम व्यर्थ की खुशफहमी पाले रहते हैं, परिणाम जब इसके विपरीत आते हैं तो पता चलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कस्तूरी सुख है, हिरण रूपी चैतन्य आत्मा में कस्तूरी सुख है और नाभि यानी वर्तमान पर्याय में है। जी हाँ, ये तो है ही।

है, काव्यात्मक तरीके से आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने आपसे ये पूछा था कि कस्तूरी मृग क्यों वन वन घूमता है। जी हाँ, वो तो कस्तूरी की सुगंध के पीछे घूमता है श्रोताओं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो कस्तूरी है वो कहीं और है। लेकिन ये तो कोरा भ्रम होता है, वो तो उसकी नाभि में होती है। इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा था, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस सवाल के जवाब को दिया भी है, देने की कोशिश भी की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कई दिनों से घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है। सिर्फ इन्होंने बड़ी ही बड़े प्यार से कह सकते हैं कि कमेंट लिख दिया है कि घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ मूछों को लेकर संसार आसार है, छोटी छोटी बातों पे बवाल होते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं यही गलतफहमियां पैदा करती हैं, और कभी कभी ये जब खुशफहमियां बन जाती हैं तो कभी थोड़ा सा हम खुश भी हो लेते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि गलतफहमी पे मैं बताना चाहूँगा, मेरी धर्मपत्नी जुड़वा हैं, अपनी जुड़वा बहन से सिर्फ 10 मिनट छोटी हैं, दोनों एक ही स्कूल में हैं और एक ही क्लास में पढ़ती थीं। धर्मपत्नी ने मुझे सगाई के बाद बताया कि उन्हें टीचर्स ने गलतफहमी से बचने के लिए कह रखा था कि स्कूल जब भी आएं तो साली साहिबा एक चोटी बनाएं और धर्मपत्नी दो चोटी रखें। मैं बताना चाहूँगा कि मुझे दोनों को पहचानने में गलतफहमी नहीं होती, तो ये तो अच्छी बात है। और इस तरह से जुड़वा बच्चों में भी होता है श्रोताओं, तो जो एक गलतफहमियां जीवन में होती हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन हमें किस तरह से इससे निपटना है। और कुछ एक तरीका तो गोलमाल फिल्म में जो मोल पालेकर हैं उन्होंने भी बताया है, तो आप हमें बताएं कि ये दो नाम कौन से थे। और संजीव कुमार की एक फिल्म थी जो गलतफहमियों पर आधारित थी, जिसमें देवेंद्र वर्मा भी थे, मौसमी चटर्जी भी थी और बहुत सारे कलाकार थे, तो आप बताएं उस फिल्म के बारे में।

कटी पतंग फिल्म का ये गीत था जो गलत फहमियों पर आधारित ये फिल्म थी श्रोताओं, और अभी तक जो गीत हमने लिए हैं वो ऐसी ही फिल्मों से हमने लिए हैं। तो ये जो फिल्मों के गीत आप सुन रहे हैं इनमें कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद है ये आप चाहें तो बता सकते हैं। और गोलमाल फिल्म के कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में हमने आपसे पूछा था, अमोल पालेकर के बारे में, और एक फिल्म संजीव कुमार की थी जिसमें देवेंद्र वर्मा और ये शेक्सपियर के उपन्यास पर थी। तो आप इसके बारे में भी अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गलतफहमी और भ्रम दोनों ही मानसिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भ्रामक स्थितियां हैं, लेकिन दोनों के मूल कारणों और प्रभावों में गहरा अंतर है। जहां गलतफहमी दो लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान में कमी का परिणाम है, वहीं भ्रम व्यक्ति की स्वयं की समझने की क्षमता में त्रुटि या मानसिक विकार है। एक और श्रोता ने लिखा है, फिल्म ज्वेल थीव देवानंद, अशोक कुमार, वैजयंती माला, पूरी फिल्म में लगता है कि देवानंद ही हैं जो असल जो चोर हैं, लेकिन वैजयंती माला का पहचान की इन्होंने मतलब फिल्म की जो बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि अक्सर हम जागते हुए भी सपनों को देखते हैं और कल्पना लोक में पहुंचकर बहुत कुछ देखते हैं, पर असलियत में वहां कुछ भी नहीं होता। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी हमें गलतफहमी होती है, जी हाँ कई बार। और एक और श्रोता ने लिखा है कि साधना जो दो रोल में है मेरा साया फिल्म में, एक सुनील दत्त की पत्नी और दूसरी डाकू के गिरोह की सदस्य थी। एक सवाल आपसे पूछते हैं श्रोताओं कि दो जो गायिकाएं हैं उनके नाम आप पहचानिए और सोचिए कि जब आप उनके गीत सुनते हैं तो क्या आपको कोई गलतफहमी होती है कि ये गीत किसने गाया है, इन्होंने गाया या इन्होंने गाया।

जाती है। ऐसा लगता है कि दूर पानी है लेकिन पानी वहाँ होता नहीं। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, दो गायिकाएं हैं, क्या उनके गीत में आपको कुछ गलतफहमियां आवाज़ में होती हैं? तो अगर आप पहचान रहे हैं इन्हें तो आप ज़रूर लिखें। और सफ़र के दरमियान भी हमने आपसे पूछा था कि बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप लिख सकते हैं।

आपकी कसम फिल्म का ये गीत था मुमताज़ पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज़ थी और श्रोताओं दो जो कलाकार हैं गायक कलाकार उनके बारे में हमने आपसे पूछा था। ये लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर जी की बात हम कर रहे थे क्योंकि इनके गाए हुए बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसमें बड़ी सारी गलतफहमियां हो जाती हैं कि किस गीत को किसने गाया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि संजीव कुमार मौसमी चटर्जी अभिनीत फिल्म इतनी सी बात का इन्होंने जिक्र किया है, जी हाँ हम लेकिन बात कर रहे हैं फिल्म अंगूर की। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक सामाजिक ज्वलंत विषय पर आधारित फिल्में हैं ये, ऐसी गलतफहमी अगर आ जाए तो बैठकर सुलझा लें, नहीं तो कितनी जिंदगियां जिंदगी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी महबूब फिल्म के बारे में कि अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म ये थी, साधना पर फिल्माया गया गीत था और साथ ही अमिता भी नज़र आती हैं श्रोताओं, और इस गीत के बारे में भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्दों से ज़्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज और लहजा माने रखता है, यदि कहे गए शब्द और बोलने का तरीका मेल नहीं खाते तो गलतफहमी हो जाती है। कई बार लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बात रखने का इंतज़ार करते हैं या आधा सुनकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आपको फिल्म और कलाकार बताने हैं।

चित्चोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं और हमने जो आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, इस फिल्म में सुनील और विनोद के बीच एक बड़ी गलतफहमी होती है। गोलमाल फिल्म में राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद हैं और अंगूर में संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा क्रमशः अशोक और बहादुर की भूमिका में।

अमोल पालेकर और जरीना बहाव पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे चितचोर फिल्म से। आवाज़ें थी येसुदास और हेमलता की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आपकी सभी कमेंट्स के लिए, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सुरीला सफ़र यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं डॉक्टर्स डे पर। आज 1 जुलाई कैलेंडर की वो तारीख जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभाती है। आज की तारीख उन डॉक्टर्स के नाम है जो हमें बीमार होने पर नया जीवन देते हैं। मरीज के अटूट विश्वास और एक चिकित्सक के निपुण प्रयास के बीच जो अदृश्य सेतु बनता है वही संसार की सबसे सुखद अनुभूति होती है। डॉक्टर्स तमाम दवाइयों के साथ साथ जब अपनी दुआ की पोटली थमाते हैं और कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे, तो आपकी आधी बीमारी उड़न छू हो जाती है। आप सबके मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं जब सफेद कोट में एक चिकित्सक आपसे मुस्कुराकर नसीहत की पोटली थमाते हैं। तब आप और हम यही कहते हैं

दोस्तों, ईश्वर के बाद जीवन दायक हमारा डॉक्टर ही होता है। ये दिन देश के सभी डॉक्टर्स के प्रति आभार जताने का एक खास मौका है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1961 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म और उनकी याद का दिन भी 1 जुलाई है। उन्हीं की याद में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स की अनिद्रा और अथक परिश्रम में ही जाने कितने परिवारों की चैन की नींद और अधरों की खोई हुई मुस्कान महकती है। जब डॉक्टर आपको मुस्कान देते हैं तो बदले में उन्हें भी आप सम्मान

जाता है कि ईश्वर हर जगह खुद नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने धरती पर फरिश्ता यानी डॉक्टर को भेज दिया। रात के 3 बज रहे हों या सुबह के 4, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कोई डॉक्टर किसी की जिंदगी बचाने के लिए जाग रहा होता है। किसी ने कहा है, मर्ज का खौफ मिट जाता है पल भर में, जब कोई डॉक्टर मुस्कुरा कर कह दे कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दवाएं तो सिर्फ साइंटिफिक फॉर्मूला हैं, असली जादू तो उस डॉक्टर के भरोसे और उनकी डांट में होता है जो अपनों जैसी लगती है। अपनी खुशियां, अपने त्योहार, यहाँ तक कि अपनी नींद भी कुर्बान कर देते हैं डॉक्टर्स। ये हौसला सिर्फ डॉक्टर के पास ही होता है जब डॉक्टर कहते हैं कि आप स्वस्थ हो जाओगे। कहते हैं कि विज्ञान जब करुणा से हाथ मिलाता है तब एक चिकित्सक का जन्म होता है। अस्पताल के शांत गलियारों से लेकर आपातकाल की उन तनावपूर्ण रातों तक डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की हर धड़कन में किसी बेबस परिवार की उम्मीद मुस्कुराती है। तो आज डॉक्टर्स डे पर देश के और दुनिया के सभी डॉक्टर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBG राम

0: जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक

0: पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: India's engagements.
3: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
2: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर GST ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। GST से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में

0: अगले दो दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सरोद भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोताओं का।

0: दुल्हन एक रात की इस फिल्म का गीत था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, राजा मेहदी अली खान का लिखा।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के

0: रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
4: लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी, ओ बावरी ओ सावरी, अरे ओ चंचल पल छिन, रुक जा रुक जा रुक जा।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज़ में एक राज फिल्म से। और श्रोताओ, इस गीत के पहले हमने आपको सुनवाया था दुल्हन एक रात की फिल्म का नगमा। उस गीत में संगीत था मदन मोहन जी का। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

प्रेम धवन का लिखा गीत आपने सुना, रवि का संगीत था, आशा भोसले की आवाज, फिल्म एक फूल दो माली से ये नगमा आप सुन रहे थे। ये गीत है जब जब फूल खिले फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है श्रोता, और यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब थोड़ी देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे सामयिक चर्चा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने आज से लागू हुए विकसित भारत ग्रामीण विकास अधिनियम 2025 विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत बढ़ी हुई श्रम दरें अधिसूचित की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम दर में वृद्धि की गई है। पहली बार प्रतिदिन 300 रुपये की अंतरिम आधार मजदूरी दर लागू की गई है। इस अधिनियम के तहत अधिसूचित कोई भी श्रम दर 300 रुपये से कम नहीं होगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य जगत के लोगों को उनके अटूट समर्पण के लिए बधाई दी है। एक वीडियो संदेश में नड्डा ने देश भर के डॉक्टरों की बेहतरीन प्रोफेशनलिज्म और मानवता के प्रति उनकी सेवा की सराहना की है। उन्होंने लोगों की तकलीफें दूर करने, जान बचाने और मरीजों की देखभाल के ऊंचे मानदंड बनाए रखने के लिए उनके अथक प्रयासों को याद किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि डॉक्टरों का निस्वार्थ समर्पण और मजबूती देश को प्रेरित करती रहेगी और एक स्वस्थ भारत बनाने की सामूहिक कोशिश को मजबूत करेगी। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज व अस्पताल नाहन में डॉक्टरों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समाजसेवी संस्था इनर व्हील क्लब ने उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले डॉक्टरों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा। क्लब की अध्यक्ष सीमा वर्मा ने बताया कि चिकित्सक हर परिस्थिति में लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और चिकित्सकों का सम्मान करना समाज का दायित्व है।
1: आज इनर व्हील नाहन क्लासिक की तरफ से डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन किया गया और 3 डॉक्टर्स को हमने सम्मानित किया है। हम सोशल वर्क करते हैं, जैसे मरीज हो आपके कोई डायलिसिस पे है, उनको कुछ सेवा की जरूरत होती है तो उनको भी हम उनकी सेवाएं देते हैं।
0: प्रदेश भाजपा महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अराजकता और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का दौर चल रहा है। शिमला जिला के जुब्बल क्षेत्र में आयोजित भाजपा के जिला महासू प्रशिक्षण महाअभियान के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार विकास के हर मोर्चे पर विफल रही है और किसान, बागवान व युवा सभी वर्ग सरकार की नीतियों से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है, लेकिन सरकार जनहित के मुद्दों का समाधान करने के बजाय केवल राजनीतिक प्रतिशोध और सत्ता बचाने में लगी हुई है। सिकंदर कुमार ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार को गांव-गांव जाकर जनता के समक्ष उजागर करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश की जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से करारा जवाब देगी और हिमाचल में सुशासन व विकास की नई सरकार बनेगी। पूर्व स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री राजा विजेंद्र सिंह का आज सुबह दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राजा विजेंद्र सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राजा विजेंद्र सिंह का प्रदेश के विकास, विशेषकर सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज कल्याण के लिए किए गए उनके कार्यों को प्रदेशवासी सदैव याद रखेंगे। राजा विजेंद्र सिंह वर्ष 1977 से 1993 के बीच 5 बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने मई 1982 से अप्रैल 1983 तक मुख्य संसदीय सचिव के रूप में कार्य किया। इसके अलावा राजा विजेंद्र सिंह ने वर्ष 1983 से 1984 और 1988 से 1989 के दौरान स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री के पद पर भी कार्य किया। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और आज सुबह से ही राज्य

0: के अधिकतर क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक मॉनसून के बेहद सक्रिय रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में मॉनसून तय समय से करीब 5 दिन की देरी से पहुंचा है, लेकिन आगामी एक सप्ताह तक इसके सक्रिय रहने का अनुमान है।
1: अब जो है हमारा मानसून जो है 30 जून को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। आज 1 जुलाई को मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर चुका है। इस साल लगभग 5 दिनों लेट मानसून हमारे यहाँ पे पहुंचा है। मानसून जो है पूरे प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाला है, जिसका असर जो है हमें लगभग सभी जिलों में रुक रुक के देखने को मिलता रहेगा अगले 5 to 7 days तक। मुख्यतः हमारा जो कांगड़ा जिला है, शिमला जिला है, उसी के साथ जो मंडी और सिरमौर जिला है, वहाँ पे 2 जुलाई, 3 जुलाई और 5 जुलाई को जो है भारी से अत्यधिक भारी बारिश को ध्यान में रखे हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आकाशवाणी शिमला से लीजिए प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, परिवर्तन के 11 वर्ष। वाचिका है प्रभा शर्मा।
3: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के आज 11 वर्ष पूरे हुए हैं, जो भारत के डिजिटल परिवर्तन की यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। 2015 से पहले सरकारी सेवाओं का मतलब अक्सर लंबी पंक्तियां, कागजी कार्रवाई और सीमित संपर्क होता था। डिजिटल इंडिया ने इंटरनेट की पहुंच बढ़ाकर और सेवाओं को ऑनलाइन लाकर डिजिटल अंतर को कम करने में सहायता की। इसने डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत किया और सेवाओं को अधिक तेज, पारदर्शी और अधिक सुलभ बनाया। अब लाखों लोग स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बैंकिंग और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। पिछले दशक में डिजिटल इंडिया भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की नींव बन गया है। भारत अब ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट से सबसे आगे है, जिसमें UPI मात्रा के लिहाज से दुनिया भर के लेन देन का लगभग 49% संभालता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 12 से 14% का योगदान देती है। आशा है कि अगले दशक में ये लगभग 5वां हिस्सा योगदान देगी। डिजिटल इंडिया ने अलग अलग क्षेत्र में नवाचार, स्टार्टअप ग्रोथ और प्रौद्योगिकी को अपनाने की गति को तेज किया। इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा में भारत की क्षमताओं को भी मजबूत किया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 9 स्तंभों के आधार पर बनाया गया था, ताकि डिजिटल पहुंच को बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत ढांचा तैयार किया जा सके, जिनमें पहला है ब्रॉडबैंड हाईवेज। पूरे देश में डिजिटल अंतर को पाटने के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। भारतनेट 1 और भारतनेट 2 के तहत देश भर में 2.22 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। जनवरी 2026 तक लगभग 2.15 लाख ग्राम पंचायतें, यानी लगभग 97% पंचायतें जुड़ चुकी हैं और देश भर में करीब 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। इससे ग्रामीण भारत में ई गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और स्थानीय उद्यमिता को काफी मजबूती मिली है। दूसरा स्तंभ है मोबाइल कनेक्टिविटी तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना। डिजिटल गवर्नेंस और समावेशी आर्थिक वृद्धि के लिए भरोसेमंद ब्रॉडबैंड जरूरी है। मार्च 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सब्सक्राइबर की संख्या बढ़कर 106.58 करोड़ हो गई। इससे ग्रामीण भारत में भरोसेमंद लास्ट लाइन डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत हुई। तीसरे स्तंभ में सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से आसानी से उपलब्ध डिजिटल

0: डिजिटल सेंटर नागरिकों को अपने घरों के पास सेवाएं पाने में सहायता करते हैं। अब 6.5 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र और 1.6 लाख डाकघर डिजिटल सेवाएं दे रहे हैं। चौथे स्तंभ में ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के जरिए सरकार में सुधार करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाएं देने के लिए बनाया गया ई गवर्नेंस पेपरलेस एकीकृत और जनता केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देता है। आज डिजी लॉकर और नेशनल सिंगल साइन ऑन इकोसिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म सर्टिफिकेट आवेदन भुगतान और सार्वजनिक सेवाओं तक आसानी से पहुंचने में मदद करते हैं।
1: सामयिक चर्चा आकाशवाणी शिमला से प्रसारित की गई, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: तो मन तो भीग गया है, रिमझिम गिरे सावन।
1: जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात की मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं, पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे इसलिए बीमार हो गए, है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है,
1: डॉक्टर,
0: हमारा डॉक्टर जो हमारा पारिवारिक डॉक्टर है,
1: जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं,
0: हाँ।
1: और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते या बहुत दूर नहीं जा सकते या ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं,
0: जाते ही उन्हें फोन पर बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके,
1: अक्सर ऐसा होता है कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो हमें जानते हैं, मतलब पहचान होती है तो आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, है ना
1: जी। बिल्कुल,
0: आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है,
1: बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज़ बुखार है, इस तरीके की चीज़ें, तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीज़ें होती हैं तो हम फ़ोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हालचाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें वो बता देते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं तो हमें फ़ायदा हो जाता है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है या बहुत समय से चल रही है तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, जो आप इस जो इस चीज़ का विशेषज्ञ है तो आप वो उसको दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं।
0: हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम बताइएगा
1: जी,
0: और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए, ऐसी स्थिति भी होती है कई बार
1: जी।
0: तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था, घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए, और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती थी तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते थे।
1: बिल्कुल,
0: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी कर देते, अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे, सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है
1: जी। ये एक जो चीज़ होती है ना, जो आप हम मानसिक जो आधार दे देते हैं ना, तो वो बहुत फायदेमंद भी होता है ना, कि आधी जो बीमारी होती है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्यों नहीं बुखार उतर रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हमें वो बताता है कि नहीं नहीं आप इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप ये दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो लगता है कि हाँ चलो हमें डॉक्टर को दिखा दिया, अब हम ठीक हो जाएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, और जो पारिवारिक चिकित्सक हैं वो केवल वही की बीमारी का इलाज नहीं करते बल्कि हमें मार्गदर्शक के रूप में भी वो होते हैं हमारे, और बच्चों के टीकाकरण से लेकर अगर बुजुर्गों की देखभाल तक देखा जाए, परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य पर वो नजर रखते हैं, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रोगी को केवल एक केस के रूप में नहीं देखते बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में समझते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत समय से इलाज हम करा रहे होते हैं तभी वो हमारे फैमिली डॉक्टर।

0: हैं, तो वो जो डॉक्टर होते हैं तो वो अच्छे से समझ के करते हैं कि हाँ वो जानते हैं इतिहास हमारा कि हम क्या परेशानी हमें रही है, क्यों रही है, कोई एलर्जी तो नहीं है। तो वो हमारा जो फैमिली डॉक्टर है, जो पारिवारिक डॉक्टर है, वो इस चीज़ को अच्छे से समझता है। तो वो जो हम कहीं बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं, तो वो भी बताता है कि आप ये चीज़ें उनको पहले बता दीजिएगा, जिससे कि उस हिसाब से वो आपको दवा दे सकेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और जैसे आरती, आजकल जो है मधुमेह की बीमारी है, या उच्च रक्तचाप हो गया है, तनाव है, हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही हैं। तो ऐसे में पारिवारिक जो चिकित्सक है हमारा, वो समय समय पर सलाह देकर इन बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोक भी देता है कि भाई आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये अपनी दिनचर्या रखनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से खाना खाना है, इस तरह की चीजें नहीं खानी है।
0: बिल्कुल। और वो डॉक्टर जो है वो हमारी दिनचर्या पर नजर भी रखते हैं कि ऐसा तो नहीं आपने कुछ लापरवाही करी हो, या आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसे खा लिया है, तो वो पूरा ध्यान भी रखते हैं। तो उनको पता होता है कि इनको हमें अभी हम इसको इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते। अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वो हमें दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और आज भी क्या है, हमें बहुत जरूरत है एक ऐसे डॉक्टर की जो हमें समझ सके, है ना, हमारे परिवार के सदस्यों को समझ सके। और विश्वास का जो रिश्ता होता है डॉक्टर मरीज के बीच, सबसे बड़ी बात क्या होती है आरती, की हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो बीमारी है उसमें ये चीजें नहीं खाना है। कई बार मैं कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो खाने का कंट्रोल करेगा।
0: जी हाँ,
1: आपने अगर खाने पर कंट्रोल नहीं करना सीखा है तो फिर डॉक्टर भी लाचार हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे बीपी की समस्या है तो वो कहते हैं नमक कम खाइए। अब आप क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नमक के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं तो नमक ऊपर से और लेती हूँ। तो फिर डॉक्टर सोचिए क्या कहेंगे, वो कैसे आपको ठीक करेंगे। और फिर जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका कहा भी कैसे मानेंगे।
0: बिल्कुल। और जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमें थोड़ा डांट डपट भी देते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना ही है, और वो समझ जाते हैं कि हमने कोई परवाही की है इस बात के बारे में भी। अगर हम कोई हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते या कोई लापरवाही करते हैं, तो फिर जाते हैं उनके पास, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं आपने ये लापरवाही ज़रूर की होगी, या आपको तला हुआ मना किया है तो आपने इसे खाया होगा तभी आपको ये परेशानी हुई है। तो क्योंकि वो हमारी बीमारी का इतिहास जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो वो अच्छे से हमारा इलाज भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए उनका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। छोटी छोटी चीजों का जो स्वाद जीभ को लग गया है ना, उस पर हमें कंट्रोल रखना
0: कंट्रोल
1: चाहिए। जैसे अब आप तुम आज पकोड़े खिलाएंगे ना हमारे श्रद्धा तो मैं थोड़ा कम खाऊंगी।
0: बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोज पकौड़े बनाने बैठ जाएं या रोज इस तरीके की तली हुई चीजें खाएं। कभी कभी चलती हैं ये सब चीजें, लेकिन हर हर समय नहीं।
1: बिल्कुल। अच्छा, आपको सीधा साधा खाना मौसम के अनुरूप खाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ खाना, ताजा पका हुआ भोजन खाइए।
0: ये जो मौसम रहता है ना, इसमें थोड़ा बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम ताजा खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं, और बेहतर होगा कि हम तला हुआ ना खाएं, सादा जो भोजन होते हैं वही सादा भोजन ही खाएं।
1: फ्रूट खाएं, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाने की कोशिश करें, अंकुरित अनाज खाएं, तो थोड़ा सा हमारा जो है स्वास्थ्य है अच्छा रह सकता है।
0: थोड़ा सा उसको रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं,
1: बहुत तरीके हैं खाने के,
0: बहुत अच्छा
1: लगता
0: है। तो
1: हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है ना आरती, वो भी खुश रहते हैं। वो नहीं चाहते कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं वहाँ के परिवार के सदस्य बीमार रहें या उनके पास इलाज के लिए आए। उनकी सफलता भी तभी होती है जब उस परिवार के सदस्य सब सही रहें, स्वस्थ रहें।
0: तो हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक यानी फैमिली डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार में सब स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं। उन्होंने हम सबको बिना ज़रूरी दवाइयों से बचाया है। उनका निदान सटीक रहता है। अगर रोग 5 दिन में काबू में नहीं आए तो वो उचित मार्गदर्शन देते हुए किसी सीनियर के पास भी भेज देते हैं। तो ये कहते हैं ये।
1: बिल्कुल। और भी किसी ने कुछ लिखा?
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि फैमिली डॉक्टर अब ये इसकी बारे में बात करें तो ना के बराबर ही रही है। अब नाखून से लेके सर के बाल तक हर अवयव का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था, और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे, और जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है आपकी वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत जरूरी है।
1: जी, एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है। और ये भगवान जैसे होते हैं, पारिवारिक चिकित्सक हमें हमारे लिए भगवान समान है। और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को

0: रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र, लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं।
1: एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।
0: और देखिए हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो हैं डॉक्टर हैं। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कम्प्लीट हो गया है और छोटा बेटा MBBS थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए।
1: बहुत अच्छी बात है। तो और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं। अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं, डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित होते हैं, इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।
0: क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है, हमारे जीवन में उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है, पारिवारिक चिकित्सक। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो उन डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें मतलब हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं
1: जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज़्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज़्यादा मेरे लिए अपने हो गए, इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज़्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
0: बिल्कुल सही कहा। और चलिए अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम करता है
1: जी, तो एक गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता हैं जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है, और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अभी आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी, और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं, और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
0: जी,

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती
1: जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं।
0: इतने सुंदर संसार में महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है।
0: उनके लिए सिर दर्द है।
1: जी बिल्कुल जी। आज हम आज लेकर आए हैं टसर यानी कि तुसार भी कहते हैं जिसे, घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है उसे।
0: बिल्कुल।
1: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है वो घीचा रेशम के कोकून का बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो रेशम की जो होती है ना उससे थोड़ा अलग होता है ये कोकून से बना होता है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो रेशम होती है।
0: तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती है। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहनें पहनती हैं, जब हमें अच्छा लगता है हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती हैं, अरे भाई कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी है। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुसार रेशम जैसे जंगली रेशम या वन रेशम या तसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये।
1: जी, और जो जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं, फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्रयुक्त होता है जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है, मतलब आप गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको।
0: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
1: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की ज़रूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
0: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है। रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं, और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक क्या है, इसको जलाकर देखा जाता है।
1: बिल्कुल। और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है।
0: अच्छा
1: जी। और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है जिससे वो सूख कर काली राख में बदल जाती है। इसकी इस प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें वो सुनहरी चमक होती है जो बहुत सुंदर दिखती है, और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
0: और

0: ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं। और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको, और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं।
1: जो साड़ी इतने ज्यादा पहनता है वो समझता है
0: कि कैसे इसको रखना है। और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके धब्बे जो है स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल। और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं, और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है।
0: बिल्कुल।
1: ये हाथ से और मेहनत से
0: बनाई जाती है, और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है। और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है ये।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी होती है साड़ियाँ। हाँ। एक गीत सुन लेते हैं ना।
0: गीत तो सुन लेते हैं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक है?
1: मुझे मालूम था ये आप कहने वाली हैं।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने
1: जी। अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं ना।
0: करिए
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं,
0: हाँ।
1: जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारे सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि हाँ। वो क्या लिख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा

0: प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है वो ज़्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और देखा जाए तो जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुँचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
0: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कंपटीशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
1: हाँ,
0: ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते रहते हैं।
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
0: बिल्कुल। और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
1: बिल्कुल। वही एक श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है, हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना।
0: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्म विकास है हम वो कर सकें, न कि हम उसमें लग के अपने को नुकसान पहुंचाएं,
1: अपने जीवन को हम बर्बाद कर लेते हैं, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं कई बच्चे, और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवाकर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के, जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। और या हम नौकरी करते हैं या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा।
0: ऐसा होता है मंदाकिनी जी की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं।
1: हाँ।
0: क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं।
1: हाँ।
0: फिर हमें हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस

0: रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं,
1: निकल जाएं। ये तो जो हमारे अंदर भावना होती है ना, असुरक्षा की भावना कहते हैं। और आरती सबसे बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं, कई बार हारने में भी बहुत मजा होता है।
0: बिल्कुल,
1: आप हार कर भी जीत जाते हैं।
0: किसी आप कभी किसी के चेहरे पे एक खुशी दे सके,
1: हाँ,
0: तो सबसे बड़ी बात ये होती है,
1: प्रतियोगिता
0: उसके चेहरे की हंसी देख के ही आपको लगेगा कि
1: मजा आता है। अब बच्चों से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है,
0: बिल्कुल,
1: तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है। और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से हिस्सा लेना है, वो कोई भी प्रतियोगिता।
0: अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं वहां से हारते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उसको मजबूत रखिए।
1: और मन के हारे हारे मन के जीते जीत जी। अगर आप हार कर भी, आपका मन नहीं हारा है, फिर भी आप जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, और वो हार जाते हैं, लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन होता है वो हमें
0: वो मनोबल जो होता है ना, वो मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
1: बिल्कुल, इसलिए प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में, जो जरूरी भी है, तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें, किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे लेकर जाएं।
0: बिल्कुल।

0: जैसे ही आसमान में कादल काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खोलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खोलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या बात करिए,
1: शानदार, बहुत शानदार,
0: ऐसी तो मतलब सोच नहीं सकते।
1: बिल्कुल, इन्होंने देखिए कितना इसको काव्यात्मक तरीके से, क्लासिक तरीके से पेश किया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से है ना अपने विचार प्रकट करें तो कार्यक्रम का मजा जो है मजा दोगुना हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां तीन चार तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, एक दो कटे हुए आलू, पालक, बेसन लीजिए और चावल का आटा ले लीजिए दो बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए, मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है और नमक आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें, एक बड़े उस पर एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज, आलू और पालक ले लें, इसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाएं, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाएं बिना पानी डाले और ज़रूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तलें एक कढ़ाई में मध्यम आँच पर और इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर पकौड़े डाल दें, कुरकुरा होने तक इसको पकाएं, मध्यम आँच पर दोनों तरफ से इसको हिला के पकाते रहें, अंत में कुछ सेकंड के लिए आँच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताई है, अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में साथ में ना, और गर्म गर्म पकौड़ों हरे धनिया की चटनी के साथ खाइए आरती जी।
0: मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि पकौड़े वो छान के निकल ही रहे,
1: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना।
0: एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
0: और हमारे जो एक है, हमारी जो श्रोता है वो लिखती है कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत, पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
1: क्या बात है, देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया इनके, है ना।
0: मैंने कहा ना
1: और कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है, गुजराती पकौड़े के शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिया का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी टोमेटो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है और ये मौसम का साथी है। भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुँह में आती है ना आरती बहुत स्वादिष्ट लगती है। और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर, मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लेना बहुत ज़रूरी।

0: या फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा घोल को तैयार करें, एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं। ध्यान रहे कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आँच गर्म रखें, तेल गर्म होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें। पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए और छम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा उन्होंने दाल के पकौड़े का बताया है रेसिपी। तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें। अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन, मिर्च, अदरक भी पीस लीजिए। पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें। धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कढ़ाही में सरसों का तेल गर्म करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें। और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है, इसे सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं। और किसी भी दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल, जो 2 चम्मच रहता है चावल, वो जरूर डालें आप।
0: तो अब पकौड़े बहुत खा लिए, गीतों का आनंद
1: भी तो ले लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे, है ना। और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आतिश श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माता जी अध्यापिका थीं और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहाँ से मैंने बीए किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहाँ मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
2: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
2: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियाँ, कुछ कविताएँ, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीज़ें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
2: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
2: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूँ ठीक से, उनको बोलता भी हूँ। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
2: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
1: अच्छा।
2: धर्मयुग, कादंबिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का युग था। तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं लिख सकता हूँ, मेरा बड़ा उत्साहवर्धन हुआ और वहाँ से मैं कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया।

0: मैं दूसरी विधाओं में आ गया।
1: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
0: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय, और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं ना कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
1: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं
0: जी,
1: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
0: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी, मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस
1: जी,
0: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, उन कहानियों को स्वीकृति मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए, और वे कहानियां कहीं ना कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं, ज़्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं नकारात्मकता को दूर करके।
1: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिया ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं, और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती है। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
0: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
1: उसका आकाश
0: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था, उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था, और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी।
1: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
0: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया लेकिन कहानियाँ मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था
1: जी,
0: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर 3 भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है, और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा, और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
1: जी।
0: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज़्यादा लिखा है, और व्यंग में सबसे ज़्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं, और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
1: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियाँ हैं राढ़ी जी, लेकिन व्यंग लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
0: जी, एक घटना हुई थी राजनीतिक। उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी और 2-3 राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई
1: जी।
0: कहीं ना कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा, और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था, और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया
1: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
0: जी,
1: मिला
0: जी।
1: तो राढ़ी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे,
1: क्या बात?
0: बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपके व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता और गिद्धों का स्वर्णकाल, अंधे पीसे और साहित्य के शनिदेव, ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग्य लेखन 1998 से शुरू कर दिया था और मैं व्यंग्य में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग्य के पितामह हैं वो, और उनके रचनावली के 6 खंड हैं, वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग्य लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग्य बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज़्यादातर वो व्यंग्य मेरे पहले व्यंग्य संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित हैं। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग्य है जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है, जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है।
0: जी।
1: ये सीधी सी बात होती है, अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो जब वह नए कुत्ते पर भौंकता है तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, और यह बात कि आप कहीं न कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है। वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है, यह व्यंग्य जो मेरा है उसी को दिखाता है। इस व्यंग्य को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग्य संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी।
1: उसके बाद

0: दूसरा व्यंग्य संग्रह में राजा गिद्धों का स्वर्णकाल, इसके आप संकेत समझाएं, क्योंकि व्यंग्य जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना,
1: जी,
0: जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का,
1: जी,
0: जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में ये विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे।
1: जी।
0: तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने हैं उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है।
1: जी, जी।
0: तीसरा जो है वो अंधे पीछे हैं, ये हमारी व्यवस्था में मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है, पूरा मुहावरा है कि अंधे पीछे कुत्ते खाएं। अंधे पीछे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाया जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं, जो कि कुत्ता जी ने समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया, हम आ गए मोबाइल युग में जिसमें लोगों पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई तीन पेज चार पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कालम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गईं, तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800, 1000, 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य के सनिधि मेरा चौथा व्यंग संग्रह है जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा। बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं, और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का सन्निधि। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है, उसमें और भी जो व्यंग हैं वो राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रमों पर हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा, व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
1: हो रहा है,
0: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है उस खाई को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है, और उसकी झलक आपको साहित्य के सन्निधियों में मिलेगी।
1: जी, तो व्यंग्य में अगर हम बात करें परसाई युग से अब तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
0: जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में, और हम व्यंगकार दावा करते हैं हम कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है। जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया।
1: जी।
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थीं, उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है।
1: जी।
0: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी हैं, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए इन चीज़ों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आज़ादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे, कितना भी लंबा आप लिखेंगे, पत्रिकाएं छापेंगी। उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थीं जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया, धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे। अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई,
1: और पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था पाठक का।
0: हाँ, बहुत बड़ा वर्ग था, बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का, और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय में एक तो व्यंग की लंबाई ज़्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियाँ कुछ दूसरी थीं। अब धीरे धीरे विसंगतियाँ बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कम हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज़ मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं।
1: जी।
0: जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई

0: के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
1: जी बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है
0: जी
1: और व्यंग्य विधा में हाथ आजमा रहा है।
0: जी
1: अब कितना वो व्यंग्य है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं,
0: जी
1: हम उसे भी व्यंग्य समझ लेते हैं और
0: जी
1: लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं।
0: जी
1: तो आपसे अगला सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राड़ी जी।
0: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूँ
1: जी
0: और मुझे एक गीत बहुत पसंद है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन
1: मन मेरा
0: मेरा, लिख लिया नाम पे
1: इसमें
0: तेरा।
1: तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। राडी साहब, व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग्य हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी।
0: जी,
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है।
0: जी,
1: जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू की राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है।
0: जी,
1: प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूँ जीवन के लिए। हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
0: जी,
1: आपने मीम्स की बात की है। मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से ये भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीज़ें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगति, इनका साज ठीक होना चाहिए।
0: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य, ये कैसा लगता है आपको?
1: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
0: जी,
1: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम हैं, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहाँ तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं। और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं।
0: जी,
1: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है।
0: जी,
1: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज़्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि व्यंग में उपन्यास काफ़ी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
0: नहीं पाया। जी,
1: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं। ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं। कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका लें किसका ना लें,

0: वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है, इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं हैं, थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे, मेरा अनुमान ऐसा है।
1: क्योंकि समय कम है लोगों के पास, और
0: जी
1: आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है, तो
0: जी
1: हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है।
0: जी
1: तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है।
0: जी
1: तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग्य की, आप
0: जी
1: व्यंग्य लेखक हैं, क्या
0: जी
1: व्यंग्य सभी पर लिखा जा सकता है, या इसमें कुछ विषय वर्जित हैं, या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
0: जी ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता
1: व्यंग
0: है।
1: है।
0: इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहाँ तक कि पंचायतों की भी सत्ता है, और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है।
1: जी
0: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है, तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है, उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता
0: बहुत
1: है कि
0: आवश्यक
1: हमने
0: होता
1: क्या
0: है
1: चुना है।
0: जी। और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि आप जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है? व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज़ पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है, किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है,
1: मतलब
0: तो
1: वैचारिकता होनी चाहिए और वैचारिक
0: हाँ,
1: बातचीत
0: उसको
1: होनी
0: आप
1: चाहिए।
0: प्रतीक मान करके लिख सकते हैं। किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं, और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए
1: जी
0: निर्देश।
1: जी हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग्य लेखन पर
0: जी
1: और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है,
0: जी
1: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच।
0: जी जरूर। कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं
1: ये
0: जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे
1: क्या
0: बिना।
1: बात है,
0: ये मैं चाहूँगा कि आप सुनवाएं।
1: आइए सुनते हैं।

0: हरिशंकर जी, तो आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: यह आपकी बात सही लगती मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है
0: जी।
1: व्यंग का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग बिरादरी से बाहर है, लेकिन व्यंग मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिल मिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो
0: जी, जी।
1: तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है
0: जी। तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग केवल एक हास्य की विधा है
1: जी,
0: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है
1: जी।
0: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा
1: जी, जी।
0: तो क्या पाठकों का व्यंग को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूँ जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं
0: जी।
1: सीधे किसी दल, किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूँगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुँचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुँचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है

0: कि आज के ज़माने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीज़ें तुरंत मिलती जा रही हैं, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
1: जी, एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए,
0: जी
1: और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
0: जी मंदाकिनी जी ने आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है, और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा यह है कि कुएं का मेंढक होना।
1: जी
0: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है, कुएं
1: बिल्कुल।
0: का मेंढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है, और वहाँ पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके, देख करके कर सकते हैं।
1: जी,
0: तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
1: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
0: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं, तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे, जैसे हमारे यहाँ सूरदास,
1: जी
0: होमर जैसे कवि। इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थीं, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्रिय थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थी।
1: जी,
0: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे,
1: जी,
0: जिन्होंने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत, यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया। और मुझे लगता है कि याजावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो
1: नहीं
0: सकता
1: हो
0: है,
1: सकता।
0: और याजावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आईं और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो
1: जी,
0: मुझे लगता है कि विचारों का पल्लवन
1: यायावरी
0: याजावरी
1: से
0: से
1: ही
0: होता
1: संभव। अरे,
0: है।
1: दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते
0: जी
1: हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह
0: जी
1: ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो
0: जी
1: लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर
0: जी
1: में जो
0: जी
1: लोग निकाल
0: जी
1: देते
0: जी
1: हैं,
0: निश्चित रूप
1: है ना?
0: से, निश्चित रूप
1: तो
0: से।
1: जब बात रचनात्मकता की आती है, तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना
0: जी
1: बहुत ज्यादा मदद करता है।
0: जी
1: तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले
0: जी
1: हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन
0: जी
1: लेते हैं।
0: जी जरूर।

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
2: जी,
1: आपकी यायावरी है इसमें, एक यात्रा संस्मरण है आपका, ये इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थीं और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुँच नहीं थी उनकी
1: जी।
2: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुँचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं, फिर इस ज़माने में यात्रा संस्मरण की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहाँ वो जिस जगह पे गया है वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के खान पान, वहाँ के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़ें तो आपको सूचनाएँ तो मिल जाएंगी
1: जी,
2: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण को सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों को एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर की यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है। मैंने मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं, मैंने प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूँ
1: जी,
2: और वहाँ पर जा करके मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहाँ के जन समुदाय को, वहाँ की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे

0: इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है, और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन विष में आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है? क्या आप गए यात्रा किए, धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहाँ आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने एंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आगे, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहाँ आपने दर्शन किया वहाँ का जीवन दर्शन क्या है, इस चीज़ को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है? और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। आप जब यात्रा करते हुए अपने मूल चीज़ों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीज़ों को मिला करके मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
0: जी जी जी जी
1: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
0: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूँ कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ, जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड, वहां पर लोग लेके जाते हैं, एक मिनट दो मिनट के उनको दर्शन मिलता है, लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी पे मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं। प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है। मुझे इस बात की, आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास ना हो, मुझे भूल जाता है कि फोटो भी खींचनी चाहिए।
1: जी
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूं मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय मोबाइल कैमरे के।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस चलते चलाते एक गीत और सुनना चाहेंगे हम।
0: जी जरूर।

था जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स

0: दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। उन्होंने बताया कि परियोजना से लगभग 75 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 98 लाख व्यक्ति दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4 से 6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबराई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल पूंजी लागत 7,145 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह परियोजना कानपुर और कबराई के बीच निर्बाध उच्च गति संपर्क प्रदान करेगी, साथ ही सागर, भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए आगे की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। इसके अलावा समिति केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श करेगी। समिति ने गृह मंत्री को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक अग्रिम जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम SIT को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। कल मैक्सिको, फ्रांस और नॉर्वे के अंतिम 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

ईश्वर का नाम ही जीवन का सच्चा आधार है। भक्ति वह दीप है जो मन के अंधकार को दूर कर देती है। जहाँ भक्ति है वहाँ शांति, प्रेम और आनंद का वास होता है। प्रभु का स्मरण हमें सकारात्मक सोच और आत्मबल प्रदान करता है।

अभी आप सुन रहे थे तृप्ति शाक्यवा साथियों का गाया ये भजन। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम

हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम युवा मंच में। जी हाँ, और आज के इस अंक में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रेनू मनकोटिया। तो कार्यक्रम का आगाज करने से पहले चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

जी हाँ, कार्यक्रम का आगाज तो हो चुका है, लेकिन विषय पर बात करने से पहले आइए सुनते हैं आप और हम ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। अब समय है लेटेस्ट स्पोर्ट्स वीड्स का, जहां बात होगी देश और दुनिया के खेल जगत की, ताज़ा हलचलों की। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट में इन दिनों युवा खिलाड़ियों को लेकर काफ़ी उत्साह है। आगामी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों को देखते हुए टीम संयोजन पर चर्चा तेज है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने स्पष्ट किया है कि टीम चयन प्रदर्शन और परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। युवा प्रतिभाओं को अवसर देने की तैयारी जारी है, लेकिन अनुभवी खिलाड़ियों पर भी भरोसा कायम है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम हाल ही में आयोजित महिला T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करती हुई सेमीफाइनल तक पहुंची। हालांकि टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर और युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन की खूब सराहना की जा रही है। साथ ही आगामी एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा भी कर दी गई है। कार्यक्रम में जानकारियां और भी साझा करेंगे, लेकिन सुनते हैं आप और हम मिलकर एक और ये गीत।

0: नई विक्टोरियस स्टाइल कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएंगे और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम युवा मंच में एक बार फिर से स्वागत आप सभी श्रोताओं का, हमारे युवा दोस्तों का। जी हाँ, बात हो रही है खेल जगत की, तो बात करते हैं फुटबॉल की दुनिया की। जी हाँ, फुटबॉल की दुनिया में इन दिनों फीफा विश्व कप 2026 का रोमांच चरम पर है। विश्व कप में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। ब्राजील, अर्जेंटीना और अन्य बड़ी टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि कई उल्टफेर भी देखने को मिले हैं, जिससे प्रतियोगिता और अधिक रोचक बन गई है। अब बात करते हैं टेनिस की। जी हाँ, विश्व के प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन 2026 का आगाज हो चुका है। दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी खिताब के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं और खेल प्रेमियों की निगाहें इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता पर टिकी हुई हैं। हॉकी की बात करें तो भारतीय हॉकी टीम आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटी हुई है। भारतीय खिलाड़ी फिटनेस और कौशल दोनों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, ताकि आने वाले विश्व कप और प्रो लीग में देश का नाम रोशन किया जा सके।

0: पति व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम युवा मंच में एक बार फिर से स्वागत हमारे तमाम श्रोताओं का। तो जी हाँ, बात हो रही है स्पोर्ट्स बीट्स की, तो अब हम बात करेंगे वॉलीबॉल की दुनिया की। वॉलीबॉल के क्षेत्र में भी भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। एशियाई वॉलीबॉल नेशंस कप 2026 की मेज़बानी भारत को सौंपी गई है, जो भारतीय खेल जगत के लिए गर्व का विषय है। युवा साथियों, खेल केवल मनोरंजन का माध्यम ही नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का भी प्रतीक है। खेल हमें स्वस्थ रहने, चुनौतियों का सामना करने और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए हम सभी अपने जीवन में खेलों को स्थान दें और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

जाने से पहले हम आपको बता दें, हमें तकनीकी सहयोग मिला विपिन कुमार से और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पॉल सिंह। और आप सुनिए चलते चलते ये म्यूजिकल ट्रैक।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी, साथ ही कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे सुरमई सांझ कार्यक्रम। ये फिल्मी गीतों पर आधारित रहेगा। शाम 6:23 पर सुनेंगे कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां। इसमें आज बातचीत का विषय रहेगा कृषि कार्यों में अधिक तकनीकों का।

उपयोग। शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती बाड़ी, विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस और साथ ही बात होगी कृषि दिवस के बारे में भी और साथ ही बात होगी अटल भूजल योजना के बारे में भी। साथ ही होंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी, भेंट वार्ता और आपके मनोरंजन के लिए कुछ लोकगीत। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस और 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा गीतकार भरत ब्यास के लिखे कुछ गीत। रात्रि 9:30 पर चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात्रि 10:00 सुनिएगा नाटक और 10:30 पर चित्रपट संगीत, पुरानी फिल्मों से गीत प्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह 7:10 पर कार्यक्रम सुबह सुहानी में जानकारियों के साथ संगम होगा मनोरंजन का भी। महिलाओं के कार्यक्रम सुनो सखी का प्रसारण समय रहेगा दिन में 12:30 पर। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये

0: 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और सुबह से ही राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हो रही है। भारी वर्षा से कुछ स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे कई स्थानों पर सड़क मार्ग अवरुद्ध रहे। उधर चंबा जिला की जनजातीय पांगी घाटी में घिसल नाले में बादल फटने से साच सैचू संपर्क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। बादल फटने के कारण आई बाढ़ से सड़क का बड़ा हिस्सा तेज बहाव में बह गया। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग बहाली का कार्य किया जा रहा है। इधर लाहौल स्पीति जिले की रानिका पंचायत के पढ़ाक गांव में बादल फटने और भारी बारिश के चलते किसानों की गोभी सहित अन्य फसलें मलबे में दबकर पूरी तरह नष्ट हो गईं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक मॉनसून के बेहद सक्रिय रहने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 2 और 3 जुलाई को सिरमौर, शिमला, मंडी और कांगड़ा जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: जो है हमारा मानसून जो है 30 जून को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर चुका है। आज 1 जुलाई को मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर चुका है। इस साल लगभग 5 दिनों लेट मानसून हमारे यहाँ पे पहुंचा है। मानसून जो है पूरे प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाला है, जिसका असर जो है हमें लगभग सभी जिलों में रुक रुक के देखने को मिलता रहेगा अगले 5 to 7 डेज तक। मुख्यतः हमारा जो कांगड़ा जिला है, शिमला जिला है, उसी के साथ जो मंडी और सिरमौर जिला है, वहाँ पे 2 जुलाई, 3 जुलाई और 5 जुलाई को जो है भारी से अत्यधिक भारी बारिश को ध्यान में रखे हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: इस बीच भारी वर्षा से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के समीप व संवेदनशील इलाकों में न जाने की सलाह दी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के पूह गांव में जनसमस्याएं सुनी और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने पूह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। जगत सिंह नेगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया, ताकि पात्र लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने नव निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी अपने संबंधित क्षेत्रों में पारदर्शिता व निष्पक्षता से विकासात्मक कार्यों को पूरा करने का आह्वान किया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्षों में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ग्रामीण और कम सुविधा वाले इलाकों में हेल्थ केयर, शिक्षा, हुनर विकसित करने, खेती और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को बढ़ाया है। पेश है ये रिपोर्ट।
3: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुरमई सांझ।

सुरमई सांझ कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं मोहम्मद अजीज के गाए इस गीत के साथ। संगीत यह है लक्ष्मी

0: एसयूवी का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

आनंद मिलिंद के संगीत निर्देशन में आइए अब सुनते हैं समीर की रचना को। कुर्बान फिल्म से ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की। सुरमई सांझ फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त रेनुमन कोटिया के साथ।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
1: नी विक्टोरियस, स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम। अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
2: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मझधार फिल्म से। इस गीत को गाया है अलका याग्निक ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और बोल हैं समीर के।

अलका याग्निक के गाए इसी गीत के साथ आज के आइए सुरमई सांझ कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की दीजिए अनुमति। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मोजां ग्राइंदियां।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राइंदी सुनने वाले सारे ही श्रोते जो पंच की तरफा ते राम राम कन्ने अज मेरे कन्ने ने टियाले पर साथ दिया करते केसर जी तुहांजो भी राम राम
1: जी बिल्कुल पंच जी तुहांजो भी राम राम कन्ने कार्यक्रम की खेती बाड़ी सुनने वाले सारे किसानों जो भी राम राम
0: जी। तो इसके बाद हाँ जी असें गलबात करनी है अजक असें धान की फसल की रुपाई जी असें करा करते हैं ना।
1: बिल्कुल अजकल जितने भी किसान हैं साढ़े से बहुत ज़्यादा व्यस्त नज़र आ करते हैं क्योंकि दिखा हूँ बरखा भी हुई है कने कई जो खेतों से पानी भी लगाई थी कने धान की रुपाई शुरू हुई है।
0: बिल्कुल और धान की रुपाई के कने कने अहाँ दे जेडे किसान भाई ने जितू कि अहाँ तिना ने मक्की भी लगाई हो तो मक्की की भी जी इसे गुडाई दसवें जरा इसे हो गया क्योंकि बारिश भी हुई तो इस बिच जरा इसे साड़ी जी खेतर ने तिथु जी इसे नमी भी बनी है तो नमी का फायदा उठाते हुए अहाँ अपनी मक्की की फसल की भी गुडाई जी इसे करी सकते हैं और करा भी करते हैं। इस बिच साढ़े जेडे फसल होंगी तिस जो क्या होंगे कि जड़े भी खरपतवार होंगे या होर अनावश्यक जड़े बूटियां निकली होंगी ना तिना ते भी जड़ा साड़ी फसल जो छुटकारा मिली आता और अहाँ की जड़ी मक्की की फसल है तिस की भी गुडाई जी इसे हो जाती है तो इसकी बढ़वार जी इसे अच्छी बनी रहती आने वाले समय।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी कहने दिखा हूँ कार्यक्रम मौजा ग्राएं दिए जहाँ अज जी गल करनी खास करके पंच जी सह करनी है कृषि कार्य च आधुनिक तकनीकों का उपयोग दिखा अजकल जो है आधुनिकीकरण हो अगर बहुत सारे ऐसी तकनीक जी इनसे आई हैं जिस कने अहाँ खेती बाड़ी के काम जो इनसे अच्छे तरीके ने करी सकते हैं कने आसान तरीके ने करी के अच्छा लाभ कमाई सकते हैं
0: जी।
1: कने किसान साथियों दिखा अज ड्रिप सिंचाई है ना स्प्रिंकल सिंचाई कने उन्नत बीज मृदा परीक्षण मौसम दी सटीक जानकारी ड्रोन ने फसल दी निगरानी कने मोबाइल ऐप इसके कने कने आधुनिक कृषि यंत्र किसानों दी बड़ी मदद करा करते हैं और इन तकनीकों ने पानी कने उर्वरक दी बचत भी होंगी है लागत जी इसे घट होंगी है उत्पादन च वृद्धि भी होंगी है
0: जी। तो ये हाँ जी से उच्च तकनीक अपनाई के जड़े से अपनी जड़ी खेती है तिस जो अच्छा पैदावार जड़ी से ले सकते और इसते जड़े से आधुनिक इसके तकनीक के कने कने अहाँ दे जड़ी नई मशीनरी है इसका उपयोग करके जड़े से अहाँ सुविधाजनक जड़ी से अपनी खेती जो बनाई सकते हैं है ना
1: जी,
0: जी।
1: बिल्कुल कहने दिखा किसान साथियों कृषि वैज्ञानिक भी टाइम टाइम पर किसानों जो नई जानकारी कने परीक्षण जो इनसे देंदे रहते हैं जिसने से अपनी फसलों जो रोगों कने कीटों से बेहतर तरीके ने बचाई सकते हैं सोगी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम ने भी किसान मंडी के भाव सरकारी योजनाओं कने नई कृषि तकनीकों की जानकारी घरे बैठे कर ही ले सकते हैं।
0: बिल्कुल ता इसके बाद हुण चलना लोक जानकारी की तरफ और सुनना एक प्यारा दे लोक भजन
1: जी।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति।

0: सुजुकी अरीना शोरूम, मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी, टीएनसी अप्लाई।
1: जी तक किसान साथियों, अहां कुछ एक संदेश सुने और इसके बाद हूँ अहां सीधे जुड़ना है चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के प्रधान कृषि विज्ञानिक डॉक्टर भृगुनाथ सिन्हा होर ने और उन्होंने जी इस गलबात करनी है।
2: जी
1: हेलो
3: हेलो
1: नमस्कार सर जी।
3: नमस्कार
1: सर, कार्यक्रम खेतीबाड़ी द्वारा स्वागत है और आज हाँ वन महोत्सव भी मना करते हैं जी कि 1 जुलाई तो लेके 7 जुलाई तक, और इस विच दिक्कत हाँ साढ़े जड़ा पर्यावरण है, साढ़ा जड़ा किसान भाई है या बागवान भाई है, साढ़े पर्यावरण कन्नै सीधे तौर पर जुड़े, तो अहाँ का किसान भाई का क्या योगदान जड़ा इस विच रहिंदा है?
3: आज ये जुलाई का जो पहला सप्ताह है
1: जी,
3: 1 से लेकर 7 जुलाई तक, ये 1950 से लेकर अब तक इसको वन महोत्सव दिवस के रूप में हमारे देश में तो लोग मनाते ही हैं।
1: जी सर।
3: और वन का महत्व इतना ज्यादा है कि अगर वन नहीं है तो शायद मानवता का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा।
1: जी।
3: तो मैं किसान राष्ट्रीय वन महोत्सव दिवस के लिए हम जो आज प्रसारण कर रहे हैं, क्योंकि वनों का महत्व हमारे देश में तो है ही, खास करके हिमाचल प्रदेश में भी काफी ज्यादा है।
1: जी।
3: और ये प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्य और हरियाली के महत्व को भी दर्शाता है।
1: हाँ जी।
3: अगर हम वन महोत्सव तो अगर हम सिर्फ एक उत्सव नहीं ले बल्कि हमारे जीवन और जो हमारा भविष्य है इसका आधार है ये।
1: हाँ जी।
3: हर प्रत्येक साल आप जानते हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में हम जैसा बताया कि एकजुट होकर हम लोग पेड़ लगाने का संकल्प लेते हैं।
1: हाँ जी।
3: और क्योंकि पेड़ हमारे, हमें पता है कि अगर पेड़ हमारे पर्यावरण का आधार भी है जिससे हमें शुद्ध वायु पानी और जीवन के साथ साथ हमारे जीविका का आधार भी माना जाता है।
1: जी।
3: तो अब हम अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, हम देखते हैं कि क्योंकि अब पूरे भारत वर्ष में इसको मनाया जा रहा है विश्व जो वन महोत्सव, सॉरी भारत वर्ष में वन महोत्सव, राष्ट्रीय वन महोत्सव की तरह इसको, तो हमारा देवभूमि, हाँ देवभूमि हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहाड़ों का घर, या ये जो है हमारा जो हिमाचल है वो पहाड़ों के लिए पहाड़ों का घर है। यहाँ हरियाली है, जंगल भी है, हमारी संस्कृति का जो है कि हिस्सा है। और यहाँ पे हर जगह आपको ऊंचाई के अनुसार कहीं पर चीड़ के, कहीं देवदार के, कहीं ओक के जैसे पेड़ हमारे लगे हुए हैं, और प्राकृतिक के बीच हमारी संस्कृति की पहचान भी बनी है। हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपको पर्यावरण के बारे में सुनना है, प्रदूषण से बचना है, सब कुछ है, तो अगर आपको कभी आना हो तो आप हिमाचल में आकर के देखिए।
1: बिल्कुल सर। और डॉक्टर भृगुनाथ सिन्हा जी, हम आपके से ये भी जानना चाहेंगे कि हम वन महोत्सव के साथ साथ हमारा हिमाचल प्रदेश जो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है, पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ जलवायु परिवर्तन का असर जो देखने को मिल रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो इसका जो कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है आज के दौर में?
3: एक्चुअली क्या है ना कि हमें इस बात का पता नहीं है कि हमारा जो हिमाचल का जो वन क्षेत्र है
1: जी,
3: वो करीब करीब 2/3 जो भूभाग है हमारे हिमाचल का, वो करीब करीब जिसको हम बोल सकते हैं कि करीब 66-70% भाग है वो एक तरह से वन से आच्छादित है, वन से ढका हुआ है।
1: हाँ जी।
3: और ये जो वन है वो हमारे लिए एक जल स्रोत की रक्षा भी करता है, जो हमारे पानी के लिए जो साधन है, क्योंकि बारिश यहीं से शुरू होती है
1: जी,
3: और
1: जी।
3: नीचे के क्षेत्रों को जाता है। उसके अलावा जैव विविधता यहाँ बहुत है, यहाँ का उसका संरक्षण है क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का इंटरफेरेंस नहीं है, लोग उसको बचा के रखे हुए हैं। मिट्टी का कटाव को रोकने में बहुत बड़ा योगदान है, और स्थानीय लोग जो वहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनके आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन भी है।
1: बिल्कुल सर।
3: तो हिमाचल प्रदेश में जो मैक्सिमम जो पेड़ है वो देवदार के हैं, और देवदार को माना जाता है कि एक तरह से भगवान का इसको एक दर्जा मिला हुआ है कि अगर हिमाचल में अगर एक तरह से राज्य
1: पेड़ की बात करें तो
3: देवदार को माना जाता है। कैल है, चीड़ है, ओक है, स्प्रूस है, इस तरह के फर के भी जंगल, भोजपत्र के भी आपने देखा होंगे कि लाहौल स्पीति के एरिया में वो भोजपत्र के भी पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
3: तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य है वो देवदार के नाम से, देवदार जिसको हम बोलते हैं सिडार भी, इससे पहचाना जाता है और इसकी पहचान भी इसी से है और इसको माना जाता है कि ये पवित्रता और दीर्घायु का प्रतीक भी है।

0: तो हिमाचल प्रदेश में जो पर्यावरण का पीछे कुछ वर्षों में कटाव जो हुआ है
1: जी,
0: बेहिसाब कह सकते हैं, या तो सड़कें बनाने के कारण हुआ है या घर बनाने के लिए लोगों को जरूरत से ज्यादा, लोग अपनी जरूरत से ज्यादा घर बना रहे हैं। जैसे एक घर में जहां पहले 10 लोग रहते थे, अब 10 घर में एक लोग रह रहे हैं, ये सिस्टम हो गया। किसी किसी घर में तो लोग बिना जरूरत के लोग घर बना, जहां पर पेड़ पौधे थे उनको लोगों ने काट दिया है, चाहे गवर्नमेंट की परमिशन से काटा हो चाहे अपने, लेकिन बहुत ज्यादा वनों की कटाई हुई है। उसका असर हमारे हिमाचल में पिछले 3-4-5 वर्षों में आपने देखा है कि बेहिसाब फ्लड, फ्लैश फ्लड आ जाता है, बादल फटने की समस्या आ रही है, कटाव, भूमि का कटाव हो रहा है लोगों के, जो कई जगह पर आप देखेंगे जैसे खासकर एप्पल ग्रोइंग एरिया जो है, जहां पर सेब की खेती अच्छी होती है, वहां पर पूरा का पूरा बगीचा ही बह गया है।
1: बोलने का मतलब सर, जो हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर दबाव जो लगातार बढ़ता जा रहा है,
0: बढ़ता जा रहा है, और ये दबाव लोगों के कारण नहीं है। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन लोगों ने अपने जरूरत से ज्यादा, बहुत यहाँ पर तो आदमी बाहर के लोगों के लिए जमीन भी नहीं ले सकता है, ऐसी तो व्यवस्था है, तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का लोड भी नहीं है, लेकिन लोगों ने इतने ज्यादा घर और वनों का कटाव भी किया। अल्टीमेटली हम यही कह सकते हैं कि वनों का कटाव इतनी बुरी तरह से हुआ है कि जिसका असर हमारे को अब देखने को मिल रहा है। खेती हमारी अब वो नहीं रह गई कि जैसे हम कहते थे कि अब बारिश हो जाएगी इतने तारीख को तो इसके बाद हम मक्की लगा लेंगे, इसके बाद धान लगा लेंगे, इसके बाद गेहूं लगा लेंगे। कई बार तो ऐसा हो रहा है कि बारिश पूरे रबी की फसल निकल जाती है, एक बार भी बारिश कई जगह पे नहीं हो पा रही है। तो पर्यावरण का में जो हम लोगों का इंटरफेरेंस है, चाहे वो किसान कह लें, चाहे वो वहां के ग्रामीण कह लें, या कैसे भी आप मान के चलिए कि जो यहाँ के निवासी हैं उनके द्वारा भी काफी एरिया को काटा गया है, काफी उस तरह उसको उसके ऊपर एक तरह से अत्याचार हुआ है, और उसका असर हमारे आने वाली जनरेशन को अभी से देखना को मिलना, आने वाले समय में तो क्या होगा इसका अंदाज लगाना तो मुश्किल है जी।
1: डॉक्टर साहब, ये जो हमारी कृषि है, इसको जो पर्यावरण को कृषि के अनुकूल कैसे बनाया जा सकेगा, इसमें हमारे बागवान किसान भाइयों का क्या योगदान रहेगा?
0: देखिए, कृषि के अनुकूल बनाने का ये है कि जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, देखिए अगर आप एक चीज को काट करके, कई बार बोलते हैं ना कि पर्यावरण का जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, अगर पेड़ पौधे हमारे सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं,
1: हाँ जी,
0: और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यही हमारा जो सबसे बड़ा बैलेंस है, जो पेड़ पौधे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे जो पर्यावरण को संतुलित करते हैं या नियंत्रित करते हैं या एक तरह से हमारे को बचा के रखे हुए हैं,
1: जी।
0: वो पर्यावरण पेड़ पौधे का बहुत बड़ा रोल है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी कम होती जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, हमारा जीवन उतना ही बढ़िया होगा, क्योंकि आजकल ग्रीन हाउस गैसेस की बात हम करते हैं, बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, विश्व लेवल पे इसके बारे में काफी चिंता हो रही है। अभी आप सुन रहे होंगे कि यूरोपियन कंट्री में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि पिछले 100 सालों में इतने ज्यादा लोग नहीं मरे, अभी कोई 10-15 दिन पहले
1: जी,
0: तो ये सब क्या है, पर्यावरण का ही असर हो रहा है, देखने को मिल रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट हो दिख रहा है, जैसे बहुत ज्यादा लोगों एसी लगाना या रेफ्रिजरेटर का यूज करना, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो जरूरत नहीं भी है उसकी भी जरूरत, उसको लोग यूज कर रहे हैं।
1: तो हम सर इसको, हमारा जो पर्यावरण है इसको,
0: कृषि और जो
1: कृषि के ऊपर,
0: कृषि भी इससे अछूता नहीं है। अछूता इसलिए नहीं है कि समय पे अगर बारिश नहीं होगी तो किसान के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है।
1: बिल्कुल जी।
0: बारिश कहाँ से हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का मतलब 70-80% एरिया ही कह लीजिए जो पूरी तरह से वर्षा पे आधारित है, मगर बारिश अगर ढंग से नहीं हुई तो हमारे किसान के लिए तो जीविका का साधन भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी का कोई सोर्स नहीं होता है, और कृषि में अगर सिंचाई आपके पास व्यवस्थित नहीं है या सिंचाई जो हमारे लिए नहीं व्यवस्था है तो कृषि को फायदेमंद बनाना या ज्यादा एक तरह से किसान के लिए हित में बनाना बड़ा मुश्किल है, और उसका सीधा असर पर्यावरण के द्वारा ही होता है। तो किसानों के लिए तो मैं कहूंगा जैसे जहां एप्पल ग्रोइंग एरिया है उनके लिए भी उनको बारिश नहीं तो बर्फ तो चाहिए,
1: बर्फ चाहिए, हाँ जी, हाँ जी।
0: ये अब पर्यावरण से हमें बहुत कुछ मिल रहा है ना, देखिए हिमाचल में हजारों ऐसे किसान हैं जिनको मधुमक्खी पालन करते हैं, उनको कहाँ से, मधुमक्खी पालन का इतना बड़ा व्यवसाय जो आच्छादित हो गया हिमाचल प्रदेश में, वो किसान जो कर रहे हैं वो कहाँ से, वो उनको तो इसी डाइवर्सिटी से ही उनको सब कुछ मिलता है,
1: हाँ
0: उनके मधुमक्खी को इन्हीं से खाने के लिए मिलता है, और इनके शहद को एक अलग सा प्राइस भी मार्केट में मिलता है, क्योंकि वनों के डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन्स को इकट्ठा कर करके और जैसे भी मधुमक्खियां इसको शहद बनाती है तो माना भी जाता है कि अच्छे तरह काफी अच्छे क्वालिटी का ये शहद।

0: है, बागवान है, वो अभी बरसात शुरू होने वाली, तो उनका क्या योगदान रहेगा अभी?
1: मैं तो कहूंगा कि सर आज का संदेश यही होना चाहिए कि एक व्यक्ति एक पौधा या एक परिवार अगर एक छोटा सा अपना बन लगा ले, बन का मतलब ये है ना, आप अपने मेड़ों पे भी बन लगाएं, वो भी
0: जी
1: बहुत
0: जी जी
1: जरूरी है। आज तो इस बात का प्रण जरूर लेना चाहिए,
0: हाँ जी
1: और ये केवल पौधे लगाना ही नहीं बल्कि उसका संरक्षण, उसकी देखभाल भी करें, उसका पालन पोषण भी करें, उसकी जिम्मेदारी उठाएं उस पेड़ को, चाहे अपने घर में किसी माँ के नाम से, अपने बेटे के नाम से, अपनी बेटी के नाम से, किसी के नाम से वो एक पौधा जरूर लगाएं। और वो पौधा बहुवर्षीय होना चाहिए,
0: जी जी
1: जो पौधा हजार आपके कम से कम 2 से 3 जनरेशन को उसका फायदा मिल सके। जरूरी नहीं है कि वो फलदार पौधा ही हो,
0: हाँ जी हाँ जी
1: वो ऐसे भी पौधे हो सकते हैं जो आपको छाया देते हो, तो ये तो मैं कहूंगा। दूसरा, किसानों को, जो किसान बेहिसाब वनों की कटाई कर करके और अपना खेत बना रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, जितना हमारे पास भूभाग है, जितनी जमीनें हैं, उसी पे हम खेती करें। थोड़ा मिट्टी के कटाव को रोकना सिर्फ पर्यावरण की जिम्मेवारी नहीं है, मिट्टी के कटाव को रोकना हमारी खेती की पद्धति को भी जरूरी है। कैसे हम खेती कर रहे हैं,
0: जी
1: किस
0: जी
1: कौन सी खेती ले रहे हैं, ज्यादा पानी वाली खेती कर रहे हैं कि कम पानी वाले सिंचाई की जरूरत वाली खेती कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। उन खेती की जरूरतों को समझना पड़ेगा कि किसान को ये सोचना कि जो मार्केट में प्राइस तो दे लेकिन पर्यावरण को भी बचा के रखे।
0: बिल्कुल सर, आपने हमें आज वन महोत्सव के ऊपर बड़ी अच्छी जानकारी दी, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद, धन्यवाद।
0: जी। तो ये तो थे डॉक्टर भृगुनाथ सिन्हा जी, जो कि प्रधान कृषि वैज्ञानिक हिमाचल प्रदेश, चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश
1: जी
0: कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से,
1: जी
0: और इन्होंने आज प्रकाश डाला कि वन महोत्सव के ऊपर जो है वो किस तरह हमारा किसान बागवान भाई जो है वो इसमें योगदान दे सकता है।
1: जी कने पांच जी हूँ दिखा फिर इतना लोक जनकार दे पास चलना है ना जी,
0: जी
1: तो सुन दे निक और प्यारा दिया लोकगीत।

0: किसान साथियों इस लोकगीत कने ही कार्यक्रम मौजा ग्राएं दिया दा समय इत्थों ही संपन्न हुंदा है। जाने दे पहले तुहानू दस दईए कि अज तकनीकी सहयोग सानू दित्ता विपिन कुमार ने और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। हुण अहां दोनों जुदिया अनुमति। अच्छा जी,
1: जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मुजंग रैंदियां। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 7 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और 9,80,000 का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने

0: सांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरे के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतन भोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यह यात्रा 3 जुलाई से नुनवान पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The government today approved the construction of 6-lane road tunnel for National Highway 148AE in Delhi, connecting Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg Vasant Kunj. Briefing media in the national capital today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the government has also approved the construction of the 117.7-kilometer Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh.
2: आज कैबिनेट में दो बड़े फैसले लिए गए।
3: टुडे द कैबिनेट अप्रूव्ड टू मेजर डिसीजंस बोथ रिलेटेड टू हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्स्ट एड्रेसेस अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इन दिल्ली फॉर इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन द नेशनल हाईवे कॉरिडोर एंड वसंत कुंज। सेवरल एफर्ट्स हैड बीन मेड ओवर द इयर्स एंड टुडे दोज प्रपोजल्स हैव फाइनली बीन अप्रूव्ड। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6-lane द्वारका टनल एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6,970 crore rupees। द सेकंड डिसीजन इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन of 4-lane access controlled highway between Kanpur and Kabrai, forming part of the corridor connecting Kanpur with Bhopal. Project has an estimated cost of 7,145 crore rupees. In addition, significant improvements have also been planned for the subsequent sections of the corridor.
2: Section ka bhi usme bahut sara improvement hai.
1: Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with the various administrations. The panel informed Mr. Shah that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. Chairperson of the Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election, P.P. Chaudhary, today stressed the need for holding simultaneous elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies. Addressing a press conference in New Delhi, he said, conducting elections together would strengthen governance, reduce disruptions caused by frequent polls, and benefit the economy. The Supreme Court today laid down guidelines on how courts should determine the annual income of deceased victims in motor accident or injured claimants on the basis of income tax returns. In a significant verdict aimed at bringing uniformity to motor accident compensation, a bench of Justices Sanjay Karol and N. Koteshwar Singh held that salaried individuals, only the income tax return of the previous year will be sufficient for showcasing the annual income. In case of self-employed persons, the bench held that the average income disclosed in ITRs for up to the previous 3 years should ordinarily serve as the reference point. The first batch of pilgrims for the Sri Amarnath Ji Yatra has reached the Bhagwati Nagar base camp in Jammu and is all set to begin the annual pilgrimage tomorrow. All necessary arrangements, including enhanced security and accommodation for pilgrims, have been put in place for the 57-day yatra scheduled to take place through the Noonwan Pahalgam and Balthal routes under tight security. The National Testing Agency, or NTA, has released the admit cards for the Indian Council of Agricultural Research's All India Entrance Examination for admission to PG and the All India Competitive Examination, GRF, SRF 2026, scheduled to be held on the 4th of July. Candidates can download their admit cards using their login credentials and check the examination schedule on the official website. Indian naval ships INS Tarkash and Ikshak concluded their port call at Port Victoria, Seychelles. Defence Ministry today said that the visit of the ships reaffirms the Indian Navy's commitment to strengthening maritime cooperation with friendly maritime nations in the Indian Ocean region in consonance with mutual and holistic advancement for security and growth across regions, that is, Mahasagar. In men's cricket, India will take on England in the first T20 international of the five-match series in Chesterley Street tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. Shreyas Iyer-led Indian side will look to bounce back from their shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुना करदे सारे श्रोतियां जो एक बारी फिरी ते टियाले ते पंच दी तरफा दे राम राम। कन्ने अज मेरा साथ दे करदे ने केसरो जी, तुहानू भी राम राम।
1: पंच जी राम राम, कन्ने किसान भाई बहन जेड़े भी इंसान जो कन्ने जुड़े तिना जो भी साड़ा राम राम
0: जी तां केसरो जी दिखा
1: जी।
0: तुहां बरसात जेड़ी इस साड़े प्रदेश बिच भी जेड़ी इसे शुरू होई गई, और
1: बिल्कुल
0: इस बरसात दा जेड़ा सा साड़ा किसान भाई बागवान भाई जेड़ा सा जरूर फायदा जेड़ा सा लेंदा है ना,
1: बिल्कुल
0: चाहे
1: बिल्कुल
0: सा फसल दी तरफा ते होए चाहे साड़ी बागवानी दी तरफा ते होन, है ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: और बागवानी दी गल करिए तां इस विच साड़े जेड़े बागवान भाई ने पिछले दिन ही तिना जेड़े इस बरसाती दे जेड़े पौधे लगते हैं ना जी, तिना दी तैयारी जेड़ी इसे कई महीने पहले ही शुरू जेड़ी इसे करी दी होंदी है। तिना अपने बगीचे जेड़े इसे खड्डे करी दे होंदे ने, वो तो जेड़ी इसे देसी खाद दा जेड़ा से पूरा प्रबंध करी लिया होंदा, कन्ने कन्ने ये पानी दा भी प्रबंध जेड़ा से तिना अपने बगीचे च कर लिया होंदा, और जल जियां ही बरसात उतरदी है ना जी तीं इसे अपने जेड़े बगीचे ने उत्थू जेड़े से पौधे दी रोपण दा काम जेड़ा से शुरू करी दें।
1: बिल्कुल तू ठीक गला दे दिखा पंज जी। जैलू भी अहाँ कुछ काम करना होंगे ना तिना की तैयारी वास्ते सब जो पहले तो तैयार रहना चाहिए है।
0: जी
1: और साढ़े किसान भाई जड़े इनसे बड़े जागरूक हैं, तिना जो पता है कि हूँ जो बरसात ऐसा है हूँ उतरने वाली है, कने आई भी गई है, कने इस बरसात की रितु च हूँ बड़े सारे काम जो इनसे खेती बाड़ी से संबंधित कने पौधा रोपण से संबंधित जड़े इनसे होने हैं।
0: और जलो हाँ अपने बगीचे की गल करते हैं तो उस बिच हाँ पहले ही योजना बनाई लेंदे हैं कि हाँ फलाने फलाने पौधे जड़े से फलानी फलानी किस्म के लियाने ने, और
1: लेना
0: अपने बगीचे जड़े से तीन पौधे कने अपने बगीचा जड़े से हाँ सजाना है ना।
1: बिल्कुल जी
0: तो ये
1: बिल्कुल
0: योजनाबद्ध तरीके ने अगर हाँ कम करके तो हाँ जो अपने बगीचे के जड़े से तरह तरह के जड़े फल होंगे ने से दिखने मिलते और खाने भी मिलते, और अगर बड़ी पैमाने हाँ कम करते हैं तो हाँ इस जड़ा से बाजारीकरण भी करते हैं, है ना। तो
1: बिल्कुल
0: अज हाँ गल भी जी इसे फलों के बारे च करनी है क्योंकि अज अंतरराष्ट्रीय फल दिवस मनाया जा करता है ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। तो किसान साथियों दिखा अज हाँ गल जी है तो दसीता पंच और आने की अंतरराष्ट्रीय दिवस बारे च करनी है। ये दिन जड़ा है सै किसान साथियों हर साल 1 जुलाई जो जड़ा से मनाया जाता है।
0: जी
1: कने फलों के महत्व की गल की जाए तो भाई स्वस्थ जीवन अगर जीना ना हाँ तो भाई फल जड़े इंसान जो जरूर शामिल करना चाहिए अपने भोजन च या खाने च, है ना।
0: खाने पानी, हाँ जी
1: बिल्कुल कने किसान साथी दिखा फल जड़ा है प्रकृति का अनमोल एक उपहार होंदा है। इन्हां ते सानू विटामिन खनिज फाइबर कने एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा च मिलते हैं।
0: हरेक पौष्टिक तत्व जेड़े से फलां च मौजूद होंदे ने, है ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। तो किसान साथियों इस दिन जो मनाने का मुख्य उद्देश्य जड़ा है सै स्वस्थ खान पान जो बढ़ावा देना, फलों के पोषण के महत्व के बारे च जागरूकता फैलाना भी है।
0: जी जी
1: कने किसान साथियों ये जड़ा दिन है पहली बारी 2007 च जर्मनी दे बर्लिन स्थित माउंट पार्क च कुछ सामाजिक कार्य दे द्वारा जड़ा ऐसा शुरू किया गया था।
0: जी
1: कने इस दिन लोग अपने परिवार दोस्त होइए या स्कूलों कने जरूरतमंदा दे सोगी अपने पसंदीदा फल जड़े इनसे साझा करी करी मनाते हैं।
0: जी
1: तो बिल्कुल तो किसान भाइयों इस वर्ष का फल दिवस जो है विशेष रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि खजूर जो वर्ष 2026 का फल जो है घोषित किया गया है।
0: जी
1: कने इसका आदर्श वाक्य भी है कि पौधे लगाएं सीखे और जश्न मनाएं।
0: यानी कि
1: बिल्कुल
0: कुल मिलाई के गल घूमी फिरी के तिथु आई आ कर दिया कि अगर हाँ इन्हें दिनों च पौधे लगाएंगे तो ही जड़े से सन संजो जड़े से भविष्य बिच संजो खाने जो फल जड़े से मिलने हैं, है
1: मिली
0: ना।
1: सकते हैं। कने दिखा पंज जी अजकल तो ऐसे ऐसे पौधे आए हो ऐसे ऐसे बीज आए हो हाईब्रिड जड़े न सती ना पौधे की जड़ी है ऊंचाई जड़ी इसे घट होंगी है कने बड़ी जल्दी से फल जड़ा से देना लगी पौधा है। तो
0: जी
1: ऐसे जड़े फलों के जड़े वृक्ष हैं हाँ जरूरी नहीं कि बड़ी ज़्यादा जगह जमीन हो ही लगाई सकते हैं। हाँ अपने आंगने च भी थोड़ी जी जगह च भी अपने जड़े फल जड़े इनसे तैयार करी सकते हैं।
0: बिल्कुल, और अगर संजो जगह नहीं भी है तो हाँ जड़े साड़े खेतरा जी जेड़ा मेड़ा होंदी है
1: हाँ
0: ना
1: जी
0: जी,
1: हाँ जी तीन पर
0: उत्थू
1: भी
0: जेड़ा से बड़ी आसानी कन्नै अपने फलां दे पौधे जेड़े से लगाई सकते हैं, पर कन्नै कन्नै हाँ जो जेड़ा से तिन्हां दी रखवाली भी करना जेड़ी से बड़ी जरूरी हो जाती है
1: हो
0: ना।
1: जाती है। बिल्कुल जी जैलू से पौधा छोटा होंगे तैलू तीसरी की संभाल करना पौधी, जैलू से थोड़ा बड़ो ही आता है तो थोड़ा जहा हाँ भाई तीस छी सकते हैं, पर जैलू छोटा है तैलू तो बोलते ना माल बच्छू जोड़ा तिना भी बचाना पौधा कहीं तीसरी देखभाल करना पौधी है। और जैलू से पौधा तैयार हो जाता पेड़ बनी आता जैलू फल दिता तो बड़ा मजा आता है।
0: जी
1: कने जैलू किसान अपनी मेहनत कने कोई फल लगाता है कोई वृक्ष लगाता है कने से जैलू फलीभूत हों तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और अं भी गलाना चाहेंगे कि अं अनाज तो खाते ही हैं पर जो फल है सू अपने खाने जरूर शामिल करना चाहिए है।
0: बिल्कुल, और अहां दे प्राइमर विद भी यही बोला करते हैं कि हाँ जो वन महोत्सव मना करते हैं 1 जुलाई तो लेके 7 जुलाई तक ना जी,
1: हाँ जी
0: तो जियां ही साढ़े वैज्ञानिक बोलते हैं कि जियां ही बरसात शुरू होती है ना तियां ही जो अहाँ जो अपना पौधा जो है लगाई देना चाहिए, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: बरसात के शुरू ही अगर अहाँ पौधे लगाई देंगे तो क्या होंगे कि अगले 2-3 महीने जलू तक बरसात चलनी ना तल तक साढ़े पौधे जो जड़े से लगातार पानी मिलता रहता है।
1: मिलता रहता
0: अगर
1: है।
0: हाँ बरसात के अंत च या मध्य समय च जड़े से लगाते हैं तो पानी की जड़ी से घाट रही जाती है, पर हाँ
1: बिल्कुल
0: शुरुआत ही अगर पौधे जो लगाई देते हैं तो सांझे जड़े से पूरी बरसात पानी देने की कोई जरूरत नहीं होंगी, यानी कि प्रकृति अपना काम जड़ी से करती रहती है और हाँ का जो पौधा है
1: बूटा
0: से
1: ऐसे
0: अच्छा
1: तैयार हो जाए।
0: बढ़वार जड़ा से लेंदा है ना।
1: बिल्कुल तो हाँ बिल्कुल सही गल गलाई है, कन्नै जरूर साढ़े किसान भाई जड़े से टियाले ते सुना दे होने, कन्नै तिना जरूर कोई ना कोई पौधा या कोई ना कोई फल लगाने दे बारे च सोचा होना, तो सोचा मत देर मत करा, कन्नै हुण जड़ा ऐसे समय बिल्कुल ठीक लग्गिया है, तो
0: जी
1: हाँ जड़ा भी पौधा लगाना चाहते हैं तुसीं ओह लगाई दिया
0: जी तो इस दे कन्ने ही हुण हाँ फिर ते चलना लोक झनकार दी तरफ और सुनना
1: जी
0: एक और प्यारा दे लोक गीत।
1: जी।

0: तो किसान साथी संजा दे टाइम में दिखा तू हाँ सुने प्यारा दिया लोक गीत और लोक गीत सुनी करी जड़ा ऐसे संजा थकान जड़ी से हटी आती साड़ी नहीं तो हाँ सारे जड़े अपने अपने कम च लगी रहते हैं कने कई तो हूँ भी कम लगे हुए कने रेडियो जोड़ा ऐसे चला था कने साढ़े टियाले कने जुड़े हुए हैं
1: जी
0: किसान साथियों दिखा हूँ अहाँ फिर तो पंच जी जानकारी पास चलना है कने एक जानकारी और जी से अज अहाँ साझी करनी से है अटल भूजल योजना के बारे च
1: जी
0: तो किसान साथियों भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य देश के चुनिंदा जल संकट वाले क्षेत्रों सामुदायिक भागीदारी के माध्यम ने भूजल प्रबंधन च सुधार करना कने भूजल स्तर की गिरावट जो रोकना है।
1: जी जी और दिखा तो हाँ साड़ा जिहड़ा पानी है इसका संरक्षण जिहड़ा सा हाँ जो करना जरूरी है क्योंकि इसका महत्व दिखा तो हाँ हुण पिछले गर्मी जिहड़ी हुई हैं इसते
0: जी
1: सानू जिहड़ा सा इसका महत्व जिहड़ा सा समझना चाहिए क्योंकि गर्मियों के दिन जिहड़ा सा पानी की जिहड़ी घाट हो जाती साढ़े क्षेत्रों में तो जिहड़े प्राकृतिक स्रोत ने उत्थों भी जल जिहड़ा सा घटी जाता और खास कर जिहड़ा भूजल है इसका तो बड़ा ज़्यादा महत्व है अगर इसका स्तर लगातार गिरा करता तो साढ़े वास्ते एक चिंता का विषय होंगे है ना।
0: बिल्कुल कने दिखा किसान साथियों कुछ बड़े मुख्य जो उद्देश्य होंगे जिसे रखी कर ही कोई योजना तैयार की जाती है। तो
1: जी
0: अगर इस योजना की गल की जाए तो स्थानीय निवासियों कने ग्राम पंचायतों जो शामिल करी के जल सुरक्षा योजना तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और भूजल के गिरदे स्तर जो सुधारना पानी का सही उपयोग करना कने पानी का सही उपयोग जो ऐसा सुनिश्चित करना कृषि च सूक्ष्म सिंचाई जो बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। पानी की खपत घट करने कने प्राकृतिक जल संसाधन के प्रबंधन के वास्ते ग्रामीणों जो जागरूक करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
1: जी जी
0: सो कि किसान साथी इस योजना की शुरुआत के बारे गल की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2019 पर इसकी जड़ी ऐसे शुरुआत
1: शुरुआत
0: की
1: की थी
0: थी।
1: हाँ जी
0: कने बजट की गल की जाए तो किसान साथियों ये योजना 6,000 करोड़ रुपए के कुल उस पर चलती है कने सोगी ही शुरू हुई थी जिसका जिस विच की 50% राशि जड़ा है विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित यानी कि ऋण के रूप च दी जाती है।
1: बिल्कुल बड़ी अच्छी जड़ी योजना है इस विच जड़े से भू जल दे संरक्षण वास्ते जड़े से काम किते जा करदा और किते भी जाना चाहिए क्योंकि साढ़े जड़े कृषि जड़ी ऐसे भू जल दे उपर काफ़ी ज़्यादा जड़े से आधारित है ना जी।
0: आधारित है बिल्कुल
1: और हाँ जो जड़े से चाहिए कि साढ़े किसान भाई हैं कि हाँ दे जड़ी भू जल दा कृषि दे विच जड़े से उपयोग कर दें तो इस विच सानू जड़े से सिंचाई दे संबंधित जड़े से अलग अलग तकनीकों का जड़ा सा उपयोग करना
0: उपयोग
1: चाहिए
0: करना चाहिए
1: जिस ते कि घट तो घट सानू भू जल दी जड़ी से जरूरत पवे और साड़ी जड़ी खेतीबाड़ी भी जड़ी से अच्छी हो
0: हो
1: सके।
0: सके
1: इस विच
0: बिल्कुल
1: जियां कि आप फुहारा सिंचाई दी गल कर
0: जी
1: दें या फिर टपक
0: स्प्रिंकल
1: सिंचाई
0: हाँ
1: दी
0: जी
1: गल कर दें तो इन तकनीक कन्ने जड़े से हाँ घट ते घट पानी कन्ने भी जड़े से अच्छी उपज जड़ी से ले सकते हैं
0: ले सकते हैं
1: तो
0: बिल्कुल
1: हाँ ता योगदान जड़ा से इस विच यही हो सकता कि हाँ नई नई तकनीक का उपयोग करके जड़ा से अपना भूजल जो जड़े से बचाई सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: इसके बाद हाँ फिर ते चलना लोक जानकार की तरफ और सुनना एक और प्यारा दिया लोक गीत
0: जी।

0: जिदा किसान साथी हाँ प्यारे दिया लोक गीत सुने कने आशा है
1: जी
0: कि संझा दी वेला लोक गीत जरूर पसंद आया ना।
1: बिल्कुल
0: और इस ते बाद हाँ फिर ते चलना जानकारी दी तरफ और जानकारी च देखा तो हाँ अजकल हाँ जेड़े हिमाचल प्रदेश के मध्यवर्ती और निचले क्षेत्र ने उत्तू जोड़ा सा अदरक हुई है हल्दी है कचालू है अरबी है जिमीकंद है बिजाई का जोड़ा सा इन्हों का उचित समय जोड़ा सा चलिया था। इस वास्ते साढ़े किसान भाई जोड़े से समय पर अहाँ दे जोड़े से खेती जोड़े खेत ने तिना जो तैयारी करके जोड़ा सा इन्हों सब्जियां जो जोड़े से लगाई सकते हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: इस दे कन्ना ही हूँ हाँ चलना कांगड़ा सब्जी मंडी की तरफ। और इस बिच अज गल करनी सब तो पहले सब्जी च आलू की। तो आलू अज 12 से 14 रुपए प्रति किलो, प्याज 28 से 32, टमाटर 24 से 30, लहसुन 120 से 130,
1: जी
0: अदरक 200 से 210 रुपए किलो, शिमला मिर्च 40 से 45 रुपए, अरबी 28 से 30, खीरा 22 से 30, मटर 100 से 120 रुपए प्रति किलो, फुल गोभी 50 से 55, बंद गोभी 15 से 17, बैंगन 18 से 20, कद्दू 15 से 20, मूली 25 से 30, टिंडा 35 से 36, पालक 30 से 35 रुपए प्रति किलो रेन।
1: बिल्कुल कन्ने हरी मिर्च की गल की जाए तो हरी मिर्च 25 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम, धनिया 100 से 120 रुपये, तोरी रही 18 से 20 रुपये, भिंडी रही 20 से 25 रुपये, घिया रहा 16 से 20 रुपये, और कटहल की सब्जी जी सह रही 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम, करेला रहा अज 18 से 20 रुपये, फ्रांस बीन रही 70 से 72 रुपये, गाजर रही 25 से 30 रुपये, मशरूम 180 से 190 रुपये रहे। कन्ने फलों की गल की जाए तो सेब अज रहा 130 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम, केला रहा 50 से 60 रुपये प्रति दर्जन, अनार रहे 140 से 150, अनानास 40 से 50, अमरूद 80 से 90 रुपये, मौसमी रही 80 से 90 रुपये, पपीता अज रहा 40 से 50 रुपये, खरबूजा रहा 25 से 35 रुपये, तरबूज 15 से 20 रुपये रहा, कन्ने आड़ू रहा 50 से 65 रुपये, चेरी जड़ी से रही 200 से 250 रुपये, और अंब रहे अज 80 से 100 रुपये। किसान साथियों अंब तोता रहा 40 से 50 रुपये, अंब दशहरी जड़ा है सह रहा 40 से 50 रुपये,
0: जी
1: नींबू अज रहे 70 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम।
0: जी ता ये था थे कांगड़ा सब्जी मंडी दे अज दे थोक भाव। और इस ते बाद अहाँ करनी गल मौसम दी। तो मौसम च
1: जी
0: दिखा तो हाँ अज भी जड़ी इस सवेरे अच्छी बारिश जड़ी इस हुई है।
1: हुई है
0: और मौसम विभाग गला करता कि अगले 2-3 दिन भी जड़ी इस अच्छी बारिश जड़ी इस
1: संभावना
0: संभावना
1: बनी
0: बनी है।
1: जी।
0: ता इस बारिश का हाँ भरपूर फायदा जड़ा इसे लेना है। और साढ़े जड़े कुछ एक ओतड़ क्षेत्र ने जितू कि पानी की ज सिंचाई की सुविधा नहीं है, तिथु जड़ा इस किसान भाई जड़े से खेतों की तैयारी तिना करी थी और पनीर भी जड़ी से तिना दी तैयार है। ता
1: बिल्कुल
0: तिथु जड़ी इसे पानी जी बारिश अच्छी बारिश होंगी है ता अपना रुपाई का काम जोड़ा सा साढ़े किसान भाई करी सकते हैं है ना। तो इस दे इसी गलबात कन्ने हूँ हाँ कार्यक्रम दे अंत एक और लोकगीत जोड़ा सा सुन देन।
1: बिल्कुल।

0: किसान साथियों, तुसें सुने लोकगीत और संझा दा बेला ऐ, कन्नै साढ़ा जाने दा समय भी होआ करदा ऐ। पर दिल करा दा कि इक होर प्यारा दे लोकगीत जेह्ड़ा असें सुनी के जाइए, तां अहां भी सुनदे कन्नै तुसें भी सुना ए प्यारा दे लोकगीत।
1: जी।

0: जिदा कि साथी इसी प्यारे दे लोक गीत कन्नै साढ़े कार्यक्रम का समय भी हुण इत्थों ही संपन्न होआ दा। जाने ते पहले दस दिए कि तकनीकी सहयोग रहा बिपिन कुमार होर दा, कन्नै प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पाल सिंह होर। हुण अपने टियाले दे सदस्य पंच जो
1: कन्नै केशव जो बयान मती।
0: अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 7:42 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: नौ आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रदेश के 8 पारंपरिक उत्पादों को मिला जीआई टैग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों से योगदान का किया आह्वान। प्रदेश में मॉनसून की भारी वर्षा से कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़क मार्ग अवरुद्ध। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन 4 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और धर्मशाला नगर निगम में महापौर व उप महापौर के चुनाव में भाजपा की जीत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कृषि महत्व वाले 8 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई पंजीकरण मिल गया है। इनमें स्पीति का सिबकथॉर्न, सलूणी सफेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोया, मंडी की सेपू बड़ी, किन्नौरी टोपी व सेब और किन्नौरी आभूषण शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों की मौलिकता व पहचान सुरक्षित रहेगी और बाजार में इनकी मांग बढ़ने के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीआई टैग मिलने

0: से जनजातीय समुदायों, कारीगरों, बुनकरों, किसानों और पारंपरिक उत्पादकों की आजीविका को मजबूती मिलेगी। इन 8 नए उत्पादों के साथ अब हिमाचल के कुल 17 पारंपरिक उत्पादों को हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद के माध्यम से GI पंजीकरण मिल चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि HAS व संबद्ध सेवाओं के अधिकारियों की राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में उनसे मिलने आए वर्ष 2026 बैच के हिमाचल प्रशासनिक सेवा व संबद्ध सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, समर्पण और सेवाभाव के साथ लोगों की सेवा करने का आह्वान किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और सुशासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता, बिना किसी भेदभाव से पहुंचाने का आह्वान किया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी, बल्कि विकसित गाँव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नशामुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों से योगदान देने का आह्वान किया है। राज्यपाल आज लोकभवन शिमला में अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा आयोजित एलिवेट एक्सपीरियंस द रियल हाई अ स्टेप टुवर्ड्स ड्रग फ्री हिमाचल अभियान के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सोसाइटी के राज्यव्यापी नशा जागरूकता अभियान का शुभारंभ भी किया। राज्यपाल ने इस पहल को नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह अभियान नशे की बेड़ियों से मुक्त भारत के निर्माण का राष्ट्रीय संकल्प है, जहां युवा अपनी प्रतिभा, दृढ़ निश्चय और मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करेंगे। कविंद्र गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए इस अभियान को प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर लागू करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं को नशे से सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान सहित अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, समाज सेवियों और युवाओं ने भाग लिया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के पुह गांव में जनसमस्याएं सुनी और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने पुह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। जगत सिंह नेगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया, ताकि पात्र लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने नव निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी अपने संबंधित क्षेत्रों में पारदर्शिता व निष्पक्षता से विकासात्मक कार्यों को पूरा करने का आह्वान किया। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में आज व्यापक वर्षा हुई। भारी वर्षा से कुछ स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं भी

0: बेहद सक्रिय रहने की संभावना है।
1: मानसून जो है पूरे प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाला है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो पूरे प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगभग सभी जिलों में सिर्फ किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ के अगले 5 दिनों तक अलग अलग स्थानों पर हमें लगातार देखने को मिलता रहेगा, जिसमें अधिकतम बारिश हमें 2 जुलाई 3 जुलाई को देखने को मिलेगी। 4 जुलाई को बारिश में थोड़ी सी कमी होगी, 5 जुलाई से बारिश एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आएगी। मुख्यतः हमारा जो कांगड़ा जिला है, शिमला जिला है, मंडी और सिरमौर जिला है, वहां पर 2 जुलाई 3 जुलाई और 5 जुलाई को जो है भारी से अत्यधिक भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
0: इस बीच भारी वर्षा से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के समीप व संवेदनशील इलाकों में न जाने की सलाह दी है। धर्मशाला नगर निगम में महापौर और उप महापौर के चुनाव में भाजपा ने निगम की सत्ता पर कब्जा जमा लिया है। भाजपा के शमशेर नहरिया महापौर जबकि प्रेरणा गुलेरिया को उप महापौर चुना गया है। भाजपा की इस जीत को धर्मशाला की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नगर निगम चुनाव में मिला ये जनादेश विकास की राजनीति पर जनता की मुहर है और इससे संगठन को भविष्य में भी मजबूती मिलेगी। वहीं नवनिर्वाचित मेयर शमशेर नहरिया ने कहा कि वे सभी पार्षदों को साथ लेकर धर्मशाला के समग्र विकास के लिए कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने आज हमीरपुर जिले में धनेड़ क्षेत्र के खटवी गांव में जनसमस्याएं सुनी और लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास और ग्रामीणों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए अनेक सराहनीय निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती से उगाई जाने वाली गेहूं, मक्की और कच्ची हल्दी के लिए भी अलग से उच्च दाम निर्धारित किए हैं। पूर्व स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री राजा विजेंद्र सिंह का आज सुबह दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे और पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। विजेंद्र सिंह वर्ष 1977 में पहली बार नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य चुने गए थे और वे 5 बार विधानसभा सदस्य रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजा विजेंद्र सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण के लिए किए गए विजेंद्र सिंह के कार्यों को प्रदेशवासी सदैव याद रखेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी विजेंद्र सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि वे गरीब व असहाय लोगों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 8 पारंपरिक उत्पादों को मिला GI टैग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों से योगदान का किया आह्वान। प्रदेश में मॉनसून की भारी वर्षा से कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़क मार्ग अवरुद्ध। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन 4 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और धर्मशाला नगर निगम में महापौर व उप महापौर के चुनाव में भाजपा की जीत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
3: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
2: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
3: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी कंडाघाट जिला सुरन से प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 2 पद और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 9 पदों को भरने हेतु

0: आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 है। आवश्यक योग्यताएं इस प्रकार से हैं। उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए तथा संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित क्षेत्र में 1 जनवरी 2026 को सामान्य रूप से रह रहे परिवार से संबंध रखती हो। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10.2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा जारी अथवा प्रति हस्ताक्षर किया होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ जो प्रमाण पत्र लगाने हैं, स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, अन्य कोई प्रमाण पत्र यदि हो तो। अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी कंडाघाट जिला सोलन के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क किया जा सकता है। रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं अमृत मान के गाए इस पंजाबी गीत के साथ।

गाड़ी का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स, और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।

कार्यक्रम सबरस में अब हम शामिल कर रहे हैं साबरी ब्रदर्स, सोनू निगम, अलका याग्निक व साथियों के गाई ये कव्वाली। मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपने रेडियो दोस्त रेणु मनकोटिया के साथ। यूं ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

अभी आप सुन रहे थे कंत कलेर की आवाज में ये पंजाबी गीत। विशेष सूचना श्रोताओं, आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम आप और हम की रिकॉर्डिंग गुरुवार 2 जुलाई 2026 को यानी कि कल दोपहर 1:15 से 1:45 तक की जाएगी। यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपने सुझाव, शिकायतें, विचार या बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग के दौरान हमें 01892224391 पर फ़ोन करें। आपकी सहभागिता हमारे कार्यक्रमों को और अधिक उपयोगी एवं रोचक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो याद रखिए, गुरुवार 2 जुलाई 2026 दोपहर 1:15 से 1:45 तक फ़ोन कीजिए 01892224391। कार्यक्रम आप और हम मैं आपका हार्दिक स्वागत है। सूचना समाप्त हुई। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं गुलाम अली की गाई ये गजल।

गुलाम अली की गाई सी गजल के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

बीपरा की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे योद्धा फिल्म से ये देशभक्ति गीत। बोल थे मनोज मुंसिर के।

उषा उत्थुप और कविता कृष्णमूर्ति की मिलीजुली आवाजों में आइए अब सुनते हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म से ये देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सब

0: ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
3: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय

0: भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फर्रुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर GST से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत के समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर

0: डेढ़ बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कॉन्गो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight. The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth a combined over 14,000 crore rupees. The projects include a 6,969 crore rupee tunnel project in Delhi aimed at easing congestion and a 7,145 crore rupee greenfield highway corridor in Uttar Pradesh. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE, connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Marg in Vasant Kunch. Mr. Vaishnav said the Cabinet also approved the construction of the 117.7 kilometer long Kanpur-Kabrai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access controlled corridor.
2: आज कैबिनेट में 2 बड़े फैसले लिए गए।
3: टुडे द कैबिनेट अप्रूव्ड 2 मेजर डिसीजंस बोथ रिलेटेड टू हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्स्ट एड्रेसेस अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इन दिल्ली फॉर इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी बिटवीन द नेशनल हाईवे कॉरिडोर एंड वसंत कुंज। सेवरल एफर्ट्स हैड बीन मेड ओवर द इयर्स एंड टुडे दोज प्रपोजल्स हैव फाइनली बीन अप्रूव्ड। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6-lane द्वारका टनल एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 6,970 crore rupees। द सेकंड डिसीजन इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन of 4-lane access controlled highway between Kanpur and Kabrai, forming part of the corridor connecting Kanpur with Bhopal. Project has an estimated cost of 7145 crore rupees. In addition, significant improvements have also been planned for the subsequent sections of the corridor.
2: Section ka bhi usme bahut sara improvement hai.
1: The Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Vikasit Bharat G Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage

जी हाँ श्रोताओं, आज हम आपको हिंदी फिल्म संगीत जगत के एक ऐसे गीतकार से परिचित करवाने जा रहे हैं जिनके गीतों में भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और संवेदनाओं की अद्भुत झलक मिलती है। हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध गीतकार पंडित भरत ब्यास की। पंडित भरत ब्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 को राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें साहित्य, कविता और संगीत में गहरी रुचि थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे मुंबई पहुंचे और फिल्म जगत से जुड़ गए। उन्होंने अपने एक फिल्मी सफ़र की शुरुआत वर्ष 1943 में फिल्म दुहाई से की। धीरे धीरे उनकी लेखनी ने हिंदी सिनेमा में एक विशिष्ट पहचान बना ली। कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं एक और प्यारा सा गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की मिलीजुली आवाजों में। जी हाँ, ये गीत हमने लिया है नवरंग फिल्म से।

भरत व्यास ने अपने गीतों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और भक्तिभाव को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। उनका लिखा गीत ए मालिक तेरे बंदे हम आज भी विद्यालयों और विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में गूंजता है। इसके अलावा ज्योति कलश छल के ये कौन चित्रकार है, आधा है चंद्रमा तो छुपी है कहाँ जैसे अनेक कालजयी गीत आज भी श्रोताओं के दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने नवरंग, दो आंखें बारह हाथ, गूंज उठी शहनाई और बूंद जो बन गई मोती जैसी अनेक सफल फिल्मों के लिए गीत लिखे। उनकी रचनाओं में काव्यात्मक सौंदर्य और भारतीयता की गहरी छाप दिखाई देती है।

4 जुलाई 1982 को पंडित भरत ब्यास इस संसार को अलविदा कह गए, लेकिन उनके अमर गीत आज भी संगीत प्रेमियों के हृदय में जीवित हैं। पंडित भरत ब्यास ने 1950 और 1960 के दशक में हिंदी सिनेमा को अनेक यादगार गीत दिए और उन्हें भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को गीतों में पिरोने वाले मुख्य गीतकारों में शामिल किया जाता है।

बूंद जो बन गया मोती। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। एक ही कलाकार का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को है, माफ कीजिएगा। अब आकाशवाणी दिल्ली से चर्चा का विषय है कार्यक्रम रिले किया जाएगा।

0: का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक हैं प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 12 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: प्रसून जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूँगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो यूपीआई है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटल, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनेरियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
4: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी, डिवाइड

0: की कीमत कम होनी चाहिए। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे। तीसरा, डेटा सबकी पहुंच में होगा। और चौथा, डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटायर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। और वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़े मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: तो सुन जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक। तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा, हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ कर किस चीज को किया?
2: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती हैं, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हो या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट, एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, CSC की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
2: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया है, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब AI इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें AI से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था US ओरिएंटेड, जिसको हम GAFAM बोलते हैं, गूगल, एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू, अलीबाबा आते हैं। दूसरा और तीसरा अब हमारा है, भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है, वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम अडॉप्ट कर रहे हैं? आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी ये पहुंचाता है, आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से अडॉप्ट कर रहा है।
2: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप क्यूआर कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पे एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी एआई है। वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी एआई का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने एआई बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि भी किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं उनको अनेबल भी किया, और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से जीपीयू प्रोवाइड कर रहा है जो सबसे सस्ता है पूरे विश्व में, वो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो एआई कोश है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो एलएलएम्स या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनको भारत यहाँ ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
3: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें है, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर की मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया, लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जरूरत है, पेमेंट्स काम है, अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हो या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हो, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी कुसुम जी ने बात किया कि एआई कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में जीपीयूस दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि MyGov जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
3: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है सरकार के पास रहना चाहिए, तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है MyGov आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो ये दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: प्रसून जी, उमंग, GSTN, पोषण ट्रैकर और PM गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और अनेबल चाहिए थी, हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है, इवन जो आपको सर्टिफिकेशंस उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, DPIT रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए हैं ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें आप आजकल डीप टेक जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए हैं, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और MSME को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है, तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
3: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था क्योंकि आइडेंटिटी जब भी हो जाएगा तभी मिडिल मैन कोई नहीं रहेगा बीच में, और इसीलिए क्या हो रहा है जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है जितना कुछ है डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है, तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश तभी हो पाया जब हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा RBI का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं जो बहुत इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर, तो और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि क्या है जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी करप्शन ये सब है वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है, और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है जो कि अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूँ उनसे।
1: प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं, आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
4: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है, और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है, ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया, और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है, TG सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया, पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई, और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है, 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है, तो IT, AI, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
2: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, AI सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन, जैसे इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम

0: खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने, वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक्स सोवरेनिटी की, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए, तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू, वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं। उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है, और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है, वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है।
1: कर रहे हैं हम
0: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी MOU साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान रखें, तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है, इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
2: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है। उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट, ओके एंडोर्समेंट जो मिलते हैं, उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए, अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए हैं, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, AI में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन AI का बात कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ सेक्टर्स हो, तो ये सब में सोवरेन AI का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है, उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी है, ये नेक्स्ट फ्रंटियर है, मतलब और ये AI के साथ कन्वर्ज होगा, मतलब AI के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरेललिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा, जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है, ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाय प्रोडक्ट है पॉलिसीज। आप जो भी पॉलिसीज चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
2: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया, अभी AI के लिए भी हम लोग को GPU चाहिए। अभी GPU अगर जो देखा जाए तो 2-3 कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है, उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का GPU चाहिए। हम लोग को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है, वो सब वो फेब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो AI तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो GPU पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है, और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी, अब प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पे जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती है कि और

0: हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक IITs के थ्रू MSMEs को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस हैं वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने MSME का जिक्र किया, तो जब MSME की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ONDC जैसी पहल हो या फिर GEM जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए, पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स के जो MSMEs हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ONDC पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए, हमारी सरकार ने मल्टीपल FTA साइन करे हैं, अब ONDC के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहाँ की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए, सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ FTA कर रही है और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले GST हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था। इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि GST जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश में आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
0: जी, टैक्सेशन और खासकर MSMEs को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो MSME हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे अब पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हों, क्योंकि अगर हमारे MSME के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं FTA के थ्रू बेचने हैं तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
1: उत्पल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और AgriStack जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे, और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग ये करते। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है, और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है, और ये खाली इंडिया का नहीं, ये पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। नाउ कमिंग टू हेल्थ केयर, जो आपने बात किया उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है, जो कि एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
1: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल

0: इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: चर्चा का विषय है।
5: अभी आप सुन रहे थे चर्चा का विषय है, जो आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं नाटक आखिरी बाजी।
6: कहाँ है मेरे पारुल, मेरे बच्चे कहाँ है? कली सब कोई तो छोड़कर चले गए हैं मुझको।
7: आ जाएंगे मेरू, वो आ ही रहे होंगे, धीरज रखो ना।
6: कब तक धीर धरूं, जाने कहाँ अटके पड़े हैं प्राण। ये छोटे तो सब दुखों से छुटकारा मिले।
7: डॉक्टर कहता है तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तुम पार्वती से मिलना चाहते हो ना? हमने आज ही उसे तुम्हारी बीमारी की सूचना भेजी है।
6: नहीं, नहीं, उसे नहीं बताना कली, वो घबरा जाएगी।
7: मेरू,
6: तू तो बसंत है कली, मधुमात भरी पुष्पित, खुली खुली सी, सब सहने योग्य।
7: और पार्वती?
6: पार्वती तो शिशिर समान है, पावन और ताप हारक, पर सिकुड़ी बंधी बंधी सी। ये समाचार उसे न देना।
7: तुम तो स्वयं ही जानते हो मेरो, कितनी गर्वीली है पार्वती, कितना स्वाभिमान है उसमें। क्या इतनी बड़ी बात उससे छुपाना ठीक रहेगा?
6: शायद नहीं, वो इसे कदापि सहन नहीं करेगी। तुम्हारे प्रति भी कुछ कड़वे बोल बोल देगी। मैं नहीं चाहता ये सब हो। उसकी विराटता के सामने जब मैं ही बौना पड़ जाता हूँ तो औरों की क्या बिसात।
7: मेरू, मेरू ये क्या हो रहा है तुम्हें? मेरू ठीक तो हो ना? देखो देखो पार्वती आने ही वाली होगी, उसका इंतजार कर लेना। हाथ जोड़कर तुम्हारी ये कली तुमसे विनती करती है मेरू, पार्वती की प्रतीक्षा अवश्य करना, जाना नहीं।
6: अब जब तुम लोगों ने उसे संदेशा भिजवा लिया है तो नहीं जाऊंगा कली, नहीं जाऊंगा मैं। पार्वती ने हर बाजी मुझसे जीती है, ये अंतिम बाजी भी वो क्यों हारे? नहीं हारने दूंगा मैं उसे कली, मैं उसे नहीं हारने दूंगा।
7: मेरू, मेरू तो ठीक तो हो ना?
6: अभी हूँ, हूँ मैं अभी कली, जवानी में ही और लिया मैंने बुढ़ापे को। शाम सुबह दिन रात सब डुबा दी मैंने रंगीन पानी में, नशे की लत, ना पारुल के बारे में सोचा, ना बच्चों के बारे में। अनजाने में किए अपराध की इतनी बड़ी सजा। ठीक है, ऐसा ही हो होना चाहिए, सबक मिलना ही चाहिए। जो इसे महज शौक से शुरू करते हैं और लत बना डालते हैं, उनको उनको सबक जानती है ना तू, जानती है ना मेरी कहानी?
7: जानती हूँ।
6: तू क्यों नहीं जानेगी? तू तो स्वयं मेरी कहानी की मुख्य पात्र है।
7: न जाने अपने अल्हड़पन में मैं क्या अपराध कर बैठी। मैं पार्वती की सदा सदा के लिए गुनाहगार होकर रह गई हूँ मेरू।
6: ना ना कलीन, ना, अपने को क्यों अपराध बोध में बांध रही है तू? वो तो मैं था, अविवेकी, पढ़ा लिखा मूर्ख, मेरा स्वाभिमान।
7: मेरू, मेरू।
6: उसका स्वाभिमान, पारुल का स्वाभिमान, फिर गए आपस में हम। मुझे झुकना चाहिए था, मैं नहीं झुका। और उसे उसे क्यों, क्या गलती थी उसकी? सुन कले, सुन रही है ना?
7: सुन रही हूँ। दिल हल्का होता है तो सुनाओ। मैं सब कुछ सुन रही हूँ, सुनाओ।
6: तो पद्म मिला था मुझे उस दिन।
1: प्रणाम पंडित जी, कहीं से कथा वथा करके आ रहे हो क्या? अरे बड़े खुश नजर आ रहे हो पंडित जी, लगता है ढेर सारा चढ़ावा मिल गया है।
2: आ यार पद्मू, बैठ। ये नगरपालिका वालों ने बेंच भी अच्छा लगा रखा है। हम जैसे थके हारों को बैठने को तो मिलता है। अच्छा बता, तो तू राजी तो है ना? और घर वाले भी राजी हैं?
1: बस सब आपकी कृपा है पंडित जी।
2: अरे कृपा तो उसकी कहो, वो ऊपर वाले की। किल्टा तो तेरा भरा हुआ है रे, कोई बीड़ी शीड़ी का बंडल भी है तेरे पास? है तो दे, लगा लेते हैं एक दो कश, तब तक तेरे से गपशप भी हो जाएगी।
1: अरे क्यों नहीं यार पंडित जी, बाजार से आ रहा हूँ, खुमानी बेची थी, पक्के भाव लग गई, तो बीड़ी भी ले आया और दिया सलाई भी, चावल ले आया, गुड़ भी ले आया, और बच्चों के कपड़े लत्ते और जूते सब कुछ। बस पंडित जी यूं समझो कि पूरा बाजार ही खरीद रहा है।
2: बड़ा आया बाजार खरीदने वाला। अब यूं कहो कि हल्दी की गट्ठी हाथ लग गई तो पंसारी बन बैठा। इधर कर बीड़ी।
1: ये ले।
2: हाँ तो गांव में सब ठीक ठाक चल रहा है ना?
1: बस ठीक ठाक ही समझ यार, छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही रहते हैं। जानता है वो दर्शन है ना, वो जो डीसी के यहाँ भी होता था, उसके चचेरे भाई ने मकान बनाया, पानी की पाइप को लेकर झगड़ा हो गया, पंचायत प्रधान तक केस चला गया।
2: अच्छा, फिर वो उसके चचेरे भाई की घरवाली तो बड़ी तेज है यार, उसने जरूर नकेल डाली होगी दर्शन।
1: अरे
2: को
1: वही तो, उसने कहा मैं नहीं गिनती प्रधान श्रधान को, वो गई एसडीएम के पास। और जानते हैं, अब सुना है पूरा का पूरा केस पंचायत से वहां को चला गया है।
2: यही तो होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करो, अपना नुकसान करो अलग, और गांव वालों की शांति भंग करो सो अलग।
1: बात तो आप पंडित जी सही कर रहे हैं, पर हमने क्या लेना देना है जी, हम तो अपने अलग मस्त मलन। और सुनाओ कुछ, पंडित्यानी के क्या हालचाल हैं? और वो छोटा पंडित?
2: बस सब ठीक ठाक है। पवन अब शरारती हो गया है, माँ को तंग करता है, पर कट रही है। सत्यनारायण जी जो प्रसाद देते हैं हम छक लेते हैं। हाँ पंडित्यानी कभी कभी कड़ी हो जाती है, बिल्कुल लाल पीली।
1: अच्छा जी, तब क्या होता है?
2: तब क्या होता है, ये मूर्खों वाले प्रश्न ना किया कर। अच्छा सुन, जनानी जो होती है ना।
1: हाँ पंडित जी, क्या होती है?
2: वो केवल लाल पीली ही होती है, बस दो ही रंग। मर्द को ऐसे आड़े समय में इंद्रधनुषी रंग छोड़ देने चाहिए, यानी सातों को सातों रंग। जनानी के दो रंग इन रंगों में घुल मिल जाते हैं और मामला रफा दफा।
1: वाह वाह वाह वाह, बड़े ज्ञान ध्यान की बातें करते हो पंडित जी आप, तभी तो पंडित हो हैं।
2: पर पद्मू, पिछले महीने मैंने जब सात रंग छोड़े ना, तो एक गड़बड़ हो गई यार।
1: वो क्या पंडित जी? अरे गड़बड़ का कोई उपाय ढूंढ लेना था आपने जत्री पोथी में।
2: अब उपाय तो यार 9 महीने बाद ही पता चलेगा।
1: अच्छा अच्छा पंडित जी, तो दूसरा है?
2: बस ऐसा ही समझ लो, जो सत्यनारायण जी को स्वीकार हो उनकी इच्छा बलवती।
1: देखो पंडित जी, अब गृहस्थी बढ़ने लगी है तो आप एक काम करो।
2: हाँ हाँ बोलो।
1: वो ऐसा है कि सराय धर्मशाला में रहना छोड़ो, खुद भी आ जाओ और पंडितानी को भी साथ ले आओ, बच्चा तो साथ आएगा ही है?
2: और पेट वाला भी तो आएगा।
1: अरे वो तो आएगा ही, और जन्म भी लेगा मेरे गांव के मकान में, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। जानते हो पंडित जी, मैंने तो नया मकान डाल लिया है, पुराने वाले में आप ही आ जाओ।
2: हाँ अब तो यही ठीक लगता है, सराय धर्मशाला के जीवन से तो तंग आ गए हैं। पार्वती भी अब एक घर चाहती है। कुछ दिन पहले तो यार बिना लगाम की घोड़ी की तरह बिदक गई, बस जी आओ देखा रहा ताओ उछल पड़ी।
8: यदि निभा नहीं सकते थे तो अग्नि को साक्षी मानकर लाए क्यों थे अपने घर? गांव में मिडिल से ऊपर पाठशाला होती तो आज 10वीं पास होती, नौकरी कर लेती कहीं। बड़े सरस्वती के उपासक बने हैं आप, एक कमरा तक तो जुटता नहीं है आपसे। बंजारों की तरह कभी इस धर्मशाला में तो कभी उस सराय में, आए दिन एक नए अनजान पड़ोसी का सामना करो, उसकी छेड़ती वाणी सुनो, उसके फिक्रे सुनो, उसके आंख मटकों से बचो, और शाम को आप प्रलयंकर शंकर बने चले आते हैं। समझ क्या रखा है मुझे? दीवार के कोने में पड़ा एक तिरस्कृत झाड़ू, हाथ कान नाक गला सब सूना पड़ा है, शरीर ढांपने को कभी कभार एक धोती ही तो देते हो ना, वो भी जुटा लूंगी मैं। 8वीं पास हूं, फिर गुण है और रूप भी है, बर्तन भांडे मांझकर भी आपसे अधिक कमा लूंगी। पिताजी ने सीता सी साध्वी होकर आशीर्वाद देकर डोली उठवाई थी, इसीलिए दो नवालों की तलाश में आपके दिए हुए ताने फटकार व्यंग सब चुपचाप अपने आंचल में बटोरती रही हूँ। सीता ने तो वनवासिनी होने पर भी स्वर्ण मृग की इच्छा जताई थी, और मैंने तो गृहस्थन होकर भी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, एक घर तक नहीं, जहां रखा जैसे रखा रही, अपनी भूख पानी के घूंटों में दबा ली। पर आपको और पवन को तो कभी भूखा नहीं सोने दिया, बहुत सह लिया, अब और नहीं सहा जाता, अब और नहीं सहा जाता।
1: ऐसा है पंडित जी, तब तो अब आपको कतई देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी जल्दी करो और बस आ ही जाओ। अब रहा मकान, वो आपका हुआ, मेरे नए मकान में आकर सत्यनारायण जी की कथा भी करवा देना, आपका वाचन सुनकर तो पूरा मांगली गांव रीत जाएगा आप पर।
2: ठीक है पद्मू, तो हम अगले हफ्ते ही आ जाएंगे और पूर्णमासी को तेरे घर कथा भी कर देंगे।
1: पक्की बात है ना?
2: पक्की, सो ले आने।
1: धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: बोलो भगवान सत्यनारायण की
1: जय।
0: तो देवियों और सजनों, अब कथा ऐसे आगे चलती है। वानिक दंपति को स्वप्न में निर्देश मिला कि वे पुत्र की अपेक्षा पुत्री की कामना करें, क्योंकि कन्या सौभाग्य और आदर का चिन्ह है। जब कन्या का जन्म हुआ तो उसे

0: कलावती नाम दिया और माता पिता ने उसके सभी संस्कार समय समय पर विधि पूर्वक संपन्न कराए। इसलिए याद रखो, कन्या को श्रेष्ठ गुण और क्षमताओं से संपन्न, शिष्ट, व्यवहार में कुशल बनाना माता पिता का पवित्र कर्तव्य है। कलावती के प्रति ये सब कर्तव्य उसके माता पिता ने धर्म पूर्वक निभाए, परंतु कलावती व्यस्क होने पर सुखोपभोग में मग्न होकर अपने सत्कर्तव्यों से विरत हो गई। इससे उसका समस्त परिवार दुखी हो गया और वो कष्ट झेलने लगी। तब कलावती अपनी भूल समझकर श्री सत्यनारायण की शरण में आई और तभी उसके सर्व दुखों का निवारण हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा।
1: धन्यवाद हमारे पंडित जी, वाह क्या कथा वाचन है, मन प्रसन्न हो गया, सच कहूं तो आनंद आ गया।
2: आनंद तो हमें भी आया पंडित जी, जितना सुंदर मुखड़ा उतने सुंदर बोल, हमने नहीं सुनी थी ऐसी वाणी आज तक। ये लीजिए पंडित जी, तुच्छ भेंट 21 रुपए चढ़ावे के, हम तो धन्य हो गए आज।
0: सौभाग्यवती हो। अरे प्रसाद तो लेती जाओ।
2: आपसे प्रसाद मिले तो लोक सुधर जाए पंडित जी। धन्यवाद।
3: बस चली गई। पर पद्मू, अरे तू तो ले आया रे हमारे गांव में एक महाज्ञानी सत्पुरुष। पंडित जी आज तो कान बड़े पवित्र हो गए।
0: अरे पद्मू, बड़े पुण्य का दिन है आज।
4: सो तो भाई भाई,
0: तूने देवी भगवती को प्रसन्न नहीं करना है क्या?
4: याद है सब मेरे को पंडित जी, सब याद है, बस अभी एक बकरू कटवा देता हूँ। आपका आदेश तो राजा का आदेश है पंडित जी।
5: थोड़ा थोड़ा नारंगी पानी भी चलेगा ना पंडित जी?
0: अरे सब कुछ चलेगा, हमारे पास तो हर गुण अवगुण के लिए हरी झंडी है, लाल तो कुछ है ही नहीं।
3: अरे पंडित जी, उसी हरी झंडी से तो पूरा का पूरा गांव आ गया था आज कथा में, भैया झूम रहे थे सब लोग।
4: अरे यार मैंने नहीं कहा था यार पंडित की, जब कथा करोगे तो मांगली रीत जाएगा तुम पर। भाई सही रही ना मेरी भविष्यवाणी है? क्यों
5: लो जी, लो शुरू हो जाओ। बांट दिया है मैंने नारंगी पानी। भगवान करे ऐसे ही सत्संग चलते रहे हमारे।
4: क्यों नहीं, क्यों?
3: अरे भैया चलते रहेंगे चलते रहेंगे, अब पंडित जी रहने चाहिए यहाँ। हाँ तो पंडित जी, है तो ये पानी पर जरा सा झटका देता है।
0: अरे तो हमें कौन से झटके खलते हैं, बस गिलास हमारे लिए दोहरा बना देना भाई।
4: खूब पंडित जी खूब। अरे बस, जितना बस। लंबा अंग रखा उतनी लंबी घूट है।
5: आज तो मामला कुछ प्रबल सा लगता है मुझे।
3: ना भैया प्रबल प्रबल कुछ नहीं। अरे तूने तो सादे पानी की जगह भी नारंगी पानी ही डाल दिया।
0: निर्जल तो निर्जला एकादशी को पीते हैं शंकर, आज तो पूर्णमासी है।
5: अरे पूर्णमासी को भी तो पूर्ण झटके लगने चाहिए ना पंडित जी। अरे पानी मिलाकर क्यों अपूर्ण करना भला।
4: अरे हाँ भाई ये भी सच है। अरे हो भाई यार,
3: तू भी लगा पंडिताई जाने।
0: अच्छा छोड़ो, चुप ये बताओ कौन थी वो, बड़े नखरे हैं उसके, 21 रुपए चढ़ा गई थी पूरे 21।
5: अरे पंडित जी देखना कहीं फिसल नहीं जाना। नाम उसका वो क्या कहवे है कथा वाली ही है। अरे ओ सरना क्या है रे उसका।
3: अरे कलावती भूल गया कलावती। इसीलिए कहा था कि सादा पानी डाल के पिया कर।
5: अरे चुप बड़बड़ बड़बड़ कर जा रहा है इतनी देर। हाँ कलावती आय हाय हाय कलावती पर देख सरना नागिन की कला है उसके पास। याद रखियो तू जिसको डस लिया वो पानी नहीं मांगता।
0: तेरे को भी डसा था रे उसने शंकरु। तभी तो तू भी जल बिना लगा हुआ है।
3: ना भैया ना हर किसी को नहीं पूछती है वो। ये पद्मू भी चला था उसके खूंटे बंधने।
6: ये मेरे गिलास है।
3: अब इसके खूंटे बंधने चला था ये पर उसने घास ही नहीं डाली।
0: क्यों रे पद्मू क्या बोलते ये लोग।
4: बोलने दो ये नारंगी पानी ना ये सब बुलवाते ही है। पर सुन पंडित शरारत इनकी थी। कुत्तो रहे पीछे चटकारे भी लिए मेरे को किया आगे फ्रंट में। और उसने भी धनाधन गोलियां क्या कहते मेरे ऊपर चला दी।
0: बंद करो ये बताओ उसकी हिस्ट्री क्या है।
5: अरे पंडित हिस्ट्री तो देख मैं बता देता हूँ पर वो क्या जुग्राफिया तो खुद ही बांटना पड़ेगा पंडित जी।
4: जानते है रे दो बच्चे है उसके दो।
0: अच्छा ऐसा तब भी पूरी योनना लगती है।
4: क्यों रे
5: बड़ा सा मकान है उसका। कमरे के अंदर कमरा उसके अंदर
4: कमरा
5: और फिर
4: कमरा।
3: चुप अरे कमरे में ही घूम जाएगा क्या। भाई बड़ी अच्छी खेती बाड़ी है। गाय है भैंस है माल ढोने को दो खच्चर है और एक छोटी सी दुकान भी है।
4: जानते है दुकान दुकान वहाँ हर चीज की कीमत में कजरारे नैनो की कीमत भी जुड़ जाती है। वो खाना अलग चलता है चाय आटा ले लो दाल ले लो और वो क्या कहते हैं मजा ले लो।
3: मजा पी लो ये बात है।
0: और सुनो यार उसका मर्द कहाँ रहता है।
5: पता है वो तो बताए पंडित जी। वो कहीं गया था दुबई सुबई पैसे कमाने के लिए। आया ली उसके बाद
3: पता ही नहीं कब है भी या नहीं है। तलाश भी करवाई थी अब पता ही नहीं मिला। 6 साल हो गए बस गुम गुम गुम।
5: और चुप कर गुम गुम का बच्चा वो कलावती है ना। यही नाम बताया था ना तूने शरणू।
4: कलावती हाँ वही है वही।
5: हाँ तो वो कलावती सजी सबरी रहती है मेरे यहाँ नई लाड़ी की तरह।
0: क्यों नहीं सजे वो सजेगी।
6: हम कह रहे हैं पंडित मेरु

0: सर
1: वो सजे जी रूप है यौवन बरकरार है चंचलता है जबान से तो बात करती ही है पर नैनों से भी करती है सुनो मुरादी फिरा दो गाँव में
2: अच्छा
1: डम डम डम यही कलावती एक दिन पंडित मेरुधर की मेनगा बनेगी मेनगा हमारी मेनगा
3: समझ गए तुम वो मेनगा बोलेगी
4: पहले पंडित जी समझ गए
5: पहले फैसला करो किस की मेनका बनेगी
3: अरे फैसला हो गया मेरी नहीं बनेगी तेरी भी नहीं बनेगी ओ पंडित
1: मेरुधर की मेनका बनेगी हमारी मेनका बनेगी
5: मेनका के नाम पर फिर नारंगी पानी

0: चाय लाई हूं, पी लो, उठो और नहा धो लो, संध्या पूजन भी तो करनी है। चातक से चुप चुप क्या तक रहे हो, कोई नवेली हूं? अरे ऐसे क्या देख रहे हो?
1: शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को, गंदले जल के भीतर रहते स्वच्छ कमल को, दुरूह पर्वतों को चीरती बहती चली आती निर्मल गंगा को।
0: बस बस बस बस, रहने भी दो, कल तो धुत होकर आए थे और अब चले फुसलाने, बच्चे क्या सीखेंगे? ये ना समझना कि नादान है, भ्रूण भी चक्रव्यूह भेदन सीख लेता है। चलो जो हो गया सो हो गया, कल से भेद करो इस दारू शारू का।
1: एक तरफ इसका साधपन और दूसरी ओर उसका भांगपन, पलड़ा तो इसी का भारी है।
0: क्या हो गया है तुम्हें आज, कहीं उसमें तो नहीं रम गए पंडित जी?
1: अब किसमें?
0: अरे वही काजल वाली, जिसके 21 रुपए थाल में आते ही 5-6 खिल गई थी मेरु धर जी की।
1: अब वो कौन है वो?
0: अरे कोई भी हो, पर मैं तो इतना कहूंगी कि ब्याता के से लच्छन नहीं है उसके। कुछ लोग तो कथा सुनने के बहाने उसी की कथा कह रहे थे, और वो भी चुल्लू भर भर कर नैनामृत पिला रही थी उन्हें।
2: पंडित जी, ओ पंडित जी।
1: हाँ जी, कौन है जी?
2: मैं हूँ जी, लाला राम। वो संदेशा लाया हूँ कलावती जी का।
1: हाँ,
2: कल को उनके बेटे का जन्मदिन है, आपने पढ़ने आना है।
1: अच्छा अच्छा,
2: ऐसा करना तड़के ही 6 बजे पहुँच जाना जी, स्कूल जाता है बच्चा।
1: अच्छा,
2: देखना देरी नहीं करना जी, देवता के मंदिर के साथ वाला बड़ा सा मकान है उनका
1: जी,
2: से भी पूछ लेना जी।
1: जी अच्छा,
2: अच्छा पंडित जी तो मैं चला।
1: अरे बता देना उनको, पंडित जी समय पर आ जाएंगे। पारुल, धोती धोकर भात का मांड चढ़ा देना उसमें।
0: जी अच्छा।
1: मार्कंडेय जी की पूजा करानी है कल, और सफेद शाल भी निकाल देना।
0: अच्छा,
1: देख लेना कहीं मैला नहीं हो।
0: अरे पूरा ठाट बाट करवा दूंगी आपका, आप चिंता ना करें।

अभी आप सुन रहे थे नाटक आखिरी बाजी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत, पुरानी फिल्मों से गीत।

पुनर्मिलन इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी का गाया हुआ, संगीत दिया था सी अर्जुन ने, अप्रैल फूल इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर। इस गीत को भी गाया है मोहम्मद रफी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

से ये गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ। चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: केंद्र है FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। नई रोशनी फिल्म के इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। रात्रि के 11 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।

0: दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज AP मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक DR कांगो ने 1-0 की

0: the last year race. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।